0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Get a room, guys. I am sure आपने अपने relationship में कभी ना कभी तो phrase सुना ही होगा from all your friends, because वो disgusted हो रहे हैं देखकर कि हर minute आपको 2 seconds मिल रहे हैं, आपको आधा second मिल रहा है. You're either kissing each other or you're holding hands and getting really touchy-feely. और ये honestly हर relationship का एक important, क्या कहते हैं उसको सोशियोलॉजी में, राइट ऑफ पैसेज होता है. मैं आपको ये भी शो ऑफ करने की कोशिश कर रही थी दैट मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स किया है, बट दैट सेड, वो एक स्टेज आता है ना हर रिलेशनशिप में वेयर यू कांट कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ. मतलब आपने अपने बंदे को देखा और आपका मन कर रहा है कि इसने ये टी शर्ट पहनी क्यों है, और अगर पहनी है तो इसे मैं फाड़ के उतार कब सकती हूँ. और ये फेज, ओके, इट काइंड ऑफ लास्ट फॉर मी इन एनी रिलेशनशिप, इट लास्ट फॉर अबाउट 1-2 महीने मेरी बेस्टी की जिंदगी में.

0: Mirci.
1: Iskaba na puskaba na sakaba na. Ya bala. Burga burga. La virba la burga. Mirci burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: ये जयदीप.
2: हाँ जी.
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी.
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए हाँ
3: तो नहीं है आपको? मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेगा?
3: यूज करूँ? आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
3: काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च जला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा.
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा.
3: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में.
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
2: है?
3: अपना हथौड़ा ना चलने पे अब सारा ने.
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँगा अब.
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
3: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक है.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मम्मी को लगता है कि आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज यू आर हिटिंग ऑन योर ट्यूशन टीचर. आपका उसके साथ एक, एज माई नानी कॉल्स इट, अफेयर चल रहा है. ऐसी अश्लील बातें आप किसके साथ शेयर करोगे?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: The right answer to that is मेरे साथ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. You can hit me up on Insta या FB and whatever your secret confession is. मैं सिर्फ आपको रोशिफाई करना चाहती हूँ और थोड़े से मजे लेना चाहती हूँ. What's wrong with that? मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
4: Hi, how are you?
2: I am very good, but you are obviously a very naughty person.
4: Totally.
2: क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था कि आपने कैसी गंदे काम किए हैं. But why don't you tell me, like, संक्षिप्त में कहते हैं कि एग्जैजरेट करके क्या कहते हैं, मतलब तसल्ली से बताओ यार कि कर क्या रहे हो आप अपनी जिंदगी में.
4: So what I'm doing right now is, हाँ. So मेरा 6 years का रिलेशन है, हाँ. But somehow मेरा बॉयफ्रेंड अब फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा चला गया है. दो आई लव हिम अ लॉट, बट आपको पता है वुमेन नीड्स तो एक चीज है ही है. तो व्हाट आई एम डूइंग नाउडेज इज आई एम जस्ट डाउनलोडिंग डेटिंग ऐप ऑन वीकेंड, हैविंग फन, एंड फिर मंडे को अनइंस्टॉल करके बैक टू बेसिक्स.
2: अच्छा, तो एक बात बताओ, ये वीकेंड पे आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलता है कि बंदी गायब है फॉर लॉन्ग आवर्स एंड यू नो फोन इज अनरीचेबल, फोन करता तो उठाती नहीं है, उसका क्या करते हो?
4: नहीं, मतलब he trusts me a lot, so
2: oh, how nice.
4: That I'm hanging out. So yeah,
2: चल जाता है यार. अगर बंदा ट्रस्ट करे then it becomes easier to cheat. ऐसे सिचुएशन में क्या मैं आपके लिए रोशिफिकेशन कर सकती हूँ या एक और डेटिंग ऐप सजेस्ट कर सकती हूँ? Which one of the two would you prefer?
4: Anything, जो आपको पसंद है इस वक्त.
2: क्या बात करिए. अच्छा, मैं तुझे ना रोशिफाई कर देती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर बैड कर्मा, हियर यू गो. Babe, you are absolutely killer. It was really nice talking to you. और अगर आपकी भी जिंदगी में ना आपने ऐसे कोई गंदे काम किए, मतलब बॉयफ्रेंड कनाडा में, ही ट्रस्ट यू सो मच एंड यू आर लाइक, हाँ तो ठीक है, ट्रस्ट को वीकेंड पे साइड पे रख देते, दैट डजंट काउंट ऑन वीकेंड्स, डज इट? आई वांट टू हियर योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, बट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: फिर जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

रिलेशनशिप में भसड़ करते टाइम आपने ये नहीं सोचा था ना दैट इज गोइंग टू एंड अप इन अ रियली हार्ड कोर कॉन्वर्सेशन विद योर गर्लफ्रेंड जो ऑब्वियस आपको काफ़ी बीटी देने वाली है. लेकिन अगर ये कॉन्वर्सेशन अभी तक नहीं हुई है, शी इज कॉल्ड यू फॉर कॉफी और आपको पता है कि आपकी पब्लिकली काफ़ी पिटाई होने वाली है, माई सजेशन टू यू इज अपने जूतों में थोड़ा सा नमक डाल कर जाना. जी हाँ बहनों और भाइयों, यू मे थिंक आई एम क्रेजी बट आई एम नॉट. साइंस के हिसाब से सॉल्ट यानी कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास की और आपके अंदर की नेगेटिविटी को बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती है और आपके सिस्टम से आप उसे दूर रखती है और आपके सिस्टम से उसे दूर रखती है. सो अगर आपके जूतों में सॉल्ट है या फिर आपकी पॉकेट में सॉल्ट है, योर गर्लफ्रेंड विल नॉट बी एबल टू सी इट. लेकिन जो टॉक्सिसिटी का माहौल बन रहा होगा, आप उसे डेफो मिनिमाइज कर सकेंगे एंड यू कैन क्लॉक दैट एज अ टिप फॉर लाइफ. इसे यूज करके देखो, गर्लफ्रेंड ने अगर आपके साथ सेम कॉफी ग्लास में एक स्ट्रॉ डाल के शेयर नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना. ऑन दैट नोट, आई रियली डोंट वॉन्ट अनदर न्यू नेम. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, जाना, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: A.G. the Gangster.
1: Mitchie.
2: R-O-C-H-I-E.
3: Roshi, Roshi.
1: Mitchie Roshi.
4: Only on Radio Mitchie New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
5: किसी ने सही कहा था, लव इज शेयरिंग योर पॉपकॉर्न एंड आई स्वेयर इट इज ट्रू. सो आई न्यू दिस गाय फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक हम 3-4 साल से दोस्त थे एंड ही वॉज डेटिंग समवन. उसका ब्रेकअप हो गया और फिर वो और मैं काफ़ी अक्सर हैंग आउट करते थे. एंड वन थिंग अबाउट हिम वॉज कि हम जब भी कोई फिल्म देखने जाते थे, ही वुड नेवर शेयर हिज पॉपकॉर्न विद एनीबडी. एंड अ कपल ऑफ टाइम्स लेटर आई रियलाइज कि अब वो मेरे साथ अपना पॉपकॉर्न शेयर कर रहा है. एंड I was looking at him very suspiciously because I knew something was up. वो अपना popcorn मेरे साथ share कर रहा है. That means that इसके feelings तो नहीं हो रहे हैं. And lo and behold, जो चौथी बार उसने मेरे साथ popcorn share किया, film का interval हुआ, he was like, I have to tell you something, we need to talk. And I was like, I already knew it, baby. तो अपना popcorn मेरे साथ share कर रहा है. And he was like, इसका क्या मतलब है? I was like, you like me. He was like, तुझे कैसे पता चला? I was like, popcorn. And it's actually true. क्या आप अपना पॉपकॉर्न किसी भी इंसान के साथ शेयर करते हो और डू यू सेव इट फॉर जस्ट समबडी यू हैव द हॉटस्पॉट? हाँ या नहीं? करोबरेट माई थ्योरी. सेंड मी योर नंबर, वील टॉक अबाउट इट ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और अगर ऐसे ही डिटेक्टिव टेस्ट चाहते हो फ्रॉम मी, लेट्स गेट टॉकिंग बेबी. एंड व्हाइल यू डू ऑल ऑफ दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: तुम्हारे दिल के साथ तो बहुत लोगों ने खेला है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे दिमाग के साथ कोई खेलना चाहता है? I want to do that, baby.
0: Love game. Love game.
2: It is time to play the love game. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. Send me your number on Insta या FB and I promise I'll call you so that we can play the love game. और मेरे साथ लाइन पर अभी रोशन है. Hi, रोशन.
3: Hi, रोशी. I'm so excited. रोशी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. क्या बताऊँ आपको.
2: थैंक यू सो मच.
3: बात से करने की इच्छा हो रही थी आपसे. आज आपने फाइनली फोन किया. थैंक यू सो मच.
2: दैट्स व्हाट आई टेल पीपल कि मतलब मुझे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए. मतलब आई कॉल यार, हो जाती है देर. अच्छा, मैं गंदा गाती हूँ, मुझे पता है. दिस इज नॉट अबाउट मी.
3: आप ये देर के लिए तो हम पूरी जिंदगी वेट कर सकते हैं रोशी. आप चिंता मत कीजिए.
2: यू आर सच अ ड्रामेबाज. आप तैयार हो ड्रामेबाज मेरे साथ लव गेम खेलने के लिए?
3: जी जरूर.
2: अच्छा ठीक है, तो अब मैं आपको तीन ऐसे हिंदी पिक्चर के डायलॉग्स बताऊंगी अंग्रेजी में. आपको मुझे बताना है कि उसका हिंदी में ओरिजिनल डायलॉग क्या था. ठीक है?
3: ठीक है.
2: आपका पहला लाइन है क्लोजर क्लोजर क्लोजर. अच्छा, मैं आपको पिक्चर का भी क्यू दे देती हूँ कि दिस इज फ्रॉम दिल तो पागल है.
3: पास और पास और ज्यादा पास.
2: यू आर स्पॉट ऑन. मुझे लगा यू आर जस्ट सेइंग पास एज इन लाइक आई वॉन्ट टू पास दिस क्वेश्चन, बट आपने तो बहुत सही बताया ये. आर यू रेडी फॉर द सेकेंड वन?
3: जी जरूर.
2: ओके, देयर यू गो. इफ यू वॉन्ट समथिंग विद ऑल योर हार्ट, द एंटायर यूनिवर्स विल ट्राई टू गिव इट टू यू.
3: अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरे कायनात उसे तुमसे मिलाने की चाहत में लग जाती है.
2: मैन, तू तो सीरियस बॉलीवुड बाफ है यार.
3: हाँ.
2: अच्छा,
3: देखकर बड़ा हुआ ना.
2: अच्छा ठीक है, ये तेरा थर्ड है. इफ यू गेट दिस राइट यू आर गेटिंग रोशिफिकेशन. ओके, सो योर थर्ड डायलॉग इज योर स्माइल इज सो डेंजरस. इफ आई हैड अ हार्ट आई वुड हैव डेफिनेटली फॉलन फॉर इट.
3: तुम्हारी स्माइल इतनी डेंजरस है ना, अगर मेरे पास दिल होता ना, कब का तुम्हारे पीछे आ जाता. ये जवानी है दीवानी से ना.
2: Dude, you are amazing. ये सिर्फ आपके लिए.
0: You've been roshified.

0: कितनी पिक्चरें देखता है यार, क्या करता है जिंदगी में?
1: वही थोड़ी बहुत पिक्चरें देख लेता हूँ, डायलॉग दिमाग में चिपक जाते हैं, क्या करें।
0: बहुत सही, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू कि आप जिंदगी में करते क्या हो, बॉलीवुड बॉलीवुड में काम तो नहीं करते?
1: नहीं नहीं, मैं एक्चुअली फिलहाल तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कभी कभी बीच में लिख लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा गा भी लेता हूँ बस।
0: सीरियसली? अच्छा ठीक है, तो फिर जाने से पहले aren't you going to like sing a song for me?
1: हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली केके का एक गाना है।

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: I hate to say this because honestly, मुझे upfront और honest लोग बहुत पसंद हैं. But the truth is, psychology के हिसाब से, if you're a guy और आप एक लड़की को chase करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आप में interested हो, you'll have to be a little bit mysterious. और उसकी हर phone call का जवाब नहीं देना है, हर message का immediately response नहीं करना है. Simply because psychology के हिसाब से, we feel very attracted to people जो initially हमें लगता है कि हमारे लिए पाना मुश्किल है. अगर आप अपनी आंखें बंद करके सोचोगे तो you will realize कि every time you fell in love with somebody जिसके बारे में आप दीवाने थे, वो इंसान आपको easily available नहीं था. So I hate to say this क्योंकि अभी मैं एक psychology की research paper पढ़ रही थी and it said that women and men are both equally attracted to people जो थोड़े से mysterious और थोड़े से like hard to get होते हैं. तो this actually works in the dating scheme of things. तो मैं मतलब accept नहीं भी करना चाहती हूँ, but कहीं ना कहीं I realize that is actually the truth of dating. तो अगर आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ try कर दिया the easy way and that person is not giving you bhav, then you can try this idea, but I personally don't really buy it. Although मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, I've continuously fallen in love with people जो hard to find और hard to chase होते हैं. और अगर आप भी मेरी तरह एक नंबर के गधे हो, why don't you hit me up and maybe we can compare our sad life की tragic stories. मेरा नाम है Mirchi Roshi, नाम की spelling है Rochie. So hit me up on the gram या Facebook and while you do that, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मम्मी को लगता है कि आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज यू आर हिटिंग ऑन योर ट्यूशन टीचर. आपका उसके साथ एक एज माई नानी कॉल्स इट अफेयर चल रहा है. ऐसी अश्लील बातें आप किसके साथ शेयर करोगे?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: द राइट आंसर टू दैट इज मेरे साथ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वट एवर योर सीक्रेट कन्फेशन इज. मैं सिर्फ आपको रोशिफाई करना चाहती हूँ और थोड़े से मजे लेना चाहती हूँ. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
4: Hi, how are you?
2: I am very good, but you are obviously a very naughty person.
4: Totally.
2: क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था कि आपने कैसी गंदे काम किए हैं. But why don't you tell me, like, संक्षिप्त में कहते हैं कि exaggerate करके क्या कहते हैं? मतलब तसल्ली से बताओ यार कि कर क्या रहे हो आप अपनी जिंदगी में.
4: So what I'm doing right now is, हाँ. So मेरा 6 years का relation है, हुँ. But somehow मेरा boyfriend अब फर्दर studies के लिए कनाडा चला गया है. दो आई लव हिम अ लॉट बट आपको पता है वुमन नीड्स तो एक चीज है ही है. तो व्हाट आई एम डूइंग नाउडेज इज आई एम जस्ट डाउनलोडिंग डेटिंग ऐप ऑन वीकेंड हैविंग फन एंड फिर मंडे को अनइंस्टॉल करके बैक टू बेसिक्स.
2: अच्छा, तो एक बात बताओ, ये वीकेंड पे आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलता है कि बंदी गायब है फॉर लॉन्ग आवर्स एंड यू नो फोन इज अनरीचेबल, फोन करता तो उठाती नहीं है, उसका क्या करता है?
4: नहीं, मतलब he trusts me a lot, so
2: oh, how nice.
4: That I'm hanging out. So, yeah,
2: चल जाता है यार. अगर बंदा ट्रस्ट करे then it becomes easier to cheat. ऐसे सिचुएशन में क्या मैं आपके लिए रोशिफिकेशन कर सकती हूँ या एक और डेटिंग ऐप सजेस्ट कर सकती हूँ? Which one of the two would you prefer?
4: Anything, जो आपको पसंद है इस वक्त.
2: क्या बात कर रही है? अच्छा, मैं तुझे ना रोशिफाई कर देती हूँ. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर बैड कर्मा. हियर यू गो. Babe, you are absolutely killer. It was really nice talking to you. और अगर आपकी भी जिंदगी में ना आपने ऐसे कोई गंदे काम किए, मतलब बॉयफ्रेंड कनाडा में ही ट्रस्ट यू सो मच एंड यू आर लाइक हाँ तो ठीक है, ट्रस्ट को वीकेंड पे साइड पे रख देते, दैट डजंट काउंट ऑन वीकेंड्स, डज इट? आई वांट टू हियर योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, बट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab mirchi kha.
5: Radio Mirchi, it's hot.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कभी कभी मुझे लगता है कि मैं काफी स्मार्ट हूँ. मतलब सोच रहे हो इसके बारे में, भगवान ने मुझे इतनी क्यूट शक्ल दी, ऊपर से इतना दिमाग भी दे दिया कि जब मैं फाइनली एक डेटिंग ऐप पर गई तो मैंने जब सब कुछ एक्टिवेट किया ना, तब संडे को दोपहर के 2 बज रहे थे. नाउ आई डिड नॉट नो दिस, बट रिसर्च के हिसाब से संडे को 2 बजे इज द बेस्ट टाइम टू गो एक्टिव ऑन योर डेटिंग ऐप इफ यू वॉन्ट बी स्वाइप राइट. वो इसलिए होता है बिकॉज संडे आफ्टरनून के टाइम तक सारी दुनिया हंगओवर होती है. सारी दुनिया इज फीलिंग सॉरी फॉर इटसेल्फ कि यार जिंदगी में प्यार नहीं है, सब कुछ है लेकिन एक कंपेनियन नहीं है. एंड लिटरली उस समय संडे को दोपहर को एवरीवन इज इंडोर्स और उन्हें नींद आ रही होती है या नहीं वो यूजुअली अपने फ़ोन पर होते हैं टाइम पास करने के लिए. देर चेकिंग आउट द डेटिंग एप्स एंड वोला हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके लिए, फ्यूचर पार्टनर आपका वहाँ इंतजार कर रहा हो. सो इफ यू वांट टू एक्चुअली एक्टिवेट योर डेटिंग ऐप, संडे 2 PM इज द बेस्ट टाइम टू डू इट. और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरी जान, यू जस्ट हैव टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड यू नो व्हाट आई ऑलवेज से, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोथ.

आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आजकल फिल्म देखने के बाद सबसे डेंजरस सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सबसे डेंजरस सवाल है कि मुझे इसे देखना क्यों चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस बदल गई है। अब सिर्फ बड़ा स्टार काफी नहीं है, सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है, सिर्फ VFX का शोर भी काफी नहीं है। कहानी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में चलता रहे। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा के बीच का वो खाली स्पेस फिर से भर रहा है। कभी एक पुरानी याद नई आवाज बनकर लौट जाती है, कभी एक छोटी सी कहानी बड़े पर्दे को चैलेंज कर देती है, और कभी बॉलीवुड हमें रोमांस के नाम पर ऐसे ऐसे लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी क्या। तो इस हफ्ते फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या टिक रहा है, और सबसे जरूरी क्या याद रह रहा है। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी किक स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है गाना नंबर 20 राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है का ट्रैक बाय अमित त्रिवेदी। This is Rang Barse.
2: Number 20.

शायद 2026 में धुरंधर एक गहरी याद बन के रह जाए, लेकिन जब मेरी जेनरेशन थोड़ी केयरफ्री थी और जिम्मेदारियां उतनी भारी नहीं फील होती थीं, तब भी एक याद थी। तीन दोस्त, एक गाड़ी और स्पेन की सड़कें, और सामने पूरी जिंदगी। 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें यही तस्वीर दी थी। अर्जुन को समंदर में उतरना था, इमरान को अपने अंदर का डर खत्म करना था, और कबीर को अपनी जिंदगी का फैसला करना था। और हम सिनेमा हॉल से निकले तो लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर 15 साल निकल गए। वो तीन दोस्त तो स्क्रीन पर कहीं रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे बाल बदले, चेहरे बदले, दोस्तियों के बीच नए नाम आ गए, कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, कुछ सपने रस्ते में रह गए। और शायद इसलिए अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल कभी आता भी है तो मुझे यार स्पेन की एक और रोड ट्रिप नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि उन तीन दोस्तों के साथ जिंदगी ने क्या किया, क्योंकि पहली फिल्म में तो वो जिंदगी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब शायद जिंदगी उन्हें ढूंढने आ गई है। नंबर 18 पर है चटनी धमाल 4 से, बट जिस ट्रिप पर निकले हैं उसे पूरा करते हैं। वो ट्रिप जिसकी हवा आज भी चलती है, ख्वाबों के परिंदे। शायद इस बार हम स्पेन नहीं देख रहे, शायद हम खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हैं।

0: माशू का एक ऐसा गाना जो सुनते ही बॉलीवुड रोमांस की पुरानी आदत याद आ जाती है, लेकिन कुछ फिल्म्स की आदत नहीं होती, उनसे उम्मीद होती है। कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर साहब ने बंटवारा 1947 को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर एक्सपेक्टेशंस सीधा आसमान तक पहुंच गए थे।
1: एक प्रेडिक्शन में करना चाहता हूं, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूं, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं, मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: अब जरा सोचिए, आमिर खान एज प्रोड्यूसर, राज

0: नेशन फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। और फिर वो फिल्म आती है और उसका म्यूजिक भी आता है और एक अजीब सी चीज होती है, कुछ भी पीछा नहीं करता। ना वो एक मुखड़ा जो दिमाग में अटक जाए, ना वो एक लाइन जो आप किसी दोस्त को भेजें, ना वो एक गाना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ घर आए। और मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि बंटवारा 1947 का कोई गाना एक सुपरहिट गाना नहीं बना, या शायद मिर्ची टॉप 20 पर नहीं आया। मुझे हैरानी है कि एआर रहमान और जावेद अख्तर की फिल्मोग्राफी से निकला हुआ एक भी गाना अभी तक मेरी यादों में जगह नहीं बना पाया। हो सकता है कि वक्त बदले, हो सकता है दैट दिस एल्बम ग्रोज ऑन मी, हो सकता है कि कोई गाना धीरे धीरे अपना रास्ता बना ले, लेकिन तब तक मैं उस एक गाने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग। और जब बात आमिर खान और एआर रहमान की हो, तो एक वक्त था जब दोनों ने ऐसे गाने दिए थे जो आज भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के दिल में उतर जाते हैं। माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स एवर, तू बिन बताए, रंग दे बसंती से।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: Breaking news, Mirchi par aane wala hai hit gana.
5: Hit gana.

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। दे फॉरगॉटन अबाउट इट। जेलसी को पैशन बना दिया है, पोजेसिवनेस को प्यार, स्टॉकिंग को पर्सिस्टेंस और मैनिपुलेशन को रिलेशनशिप टेस्ट। कभी कभी चीटिंग को भी ट्रू लव कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे। रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्रायंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। एंड दैट इज वॉट कॉकटेल 2 ट्राइड टू एक्सप्लोर व्हेन आई वॉच्ड इट ऑन OTT। यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए दैट ऑडियंस रोम कॉम्स चाहती है, टॉक्स कॉम्स नहीं। वी डोंट वॉन्ट टॉक्सिक लव, बट फ्रॉम टॉक्सिक लव आई वॉन्ट टू प्ले स्वीट इनोसेंट लव। बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया। इट्स माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: Attempt to go reach and better than our right.

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार? अमाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट। बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग, इट वाज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रॉमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। सो सिंस अ ईयर इट इज बीन इन माई वॉइस, someone comes once in an era and becomes an Arijit Singh. Not everyone has the skill set also, not everyone has the blessing of God also, and not everyone has the heart also like him to step away in the prime. Yani he himself also used to tell, is gaane ke liye bhi usne mere liye ladai ki hai, usne bola hai sabko, are Amal ne itna acha gaya hai mujhe kyun gawa rahe ho. To maine bola aisa mujhe chahiye, and sir in log kisi ki bhi nahi hai sir, meri requirement hai that you at least see if you like the song, pura ban gaya, check it out. So it was just about 3-4 months before abhi that song came that he started recording and revisited the song 2-3 times.
0: Aur aaj gehra hua ko piche chhod kar wahi aawaz phir se number 1 ban gayi hai. This is ye awarapan, the new undisputed number 1 song on the Mirchi Top 20.

0: ये आवारापन मिर्ची डॉट 20 को एक नई जगह पहुंचा दिया इसने, और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं। कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिलो दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल, दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो एंड वेलकम। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रज़िया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था एक्चुअली, ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, ओ सॉरी, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहाँ पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
5: आई आई आई आई आई आई

इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहाँ के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व्ड होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे, इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आज एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर के बारे में बात हो रही है पुरानी जींस पे, जिनके लिए कह सकते हैं दैट ही वाज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया, कमाल अमरोही साहब, जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई, जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना, तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता है कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब की आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस। बस वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है, है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात। कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफ कोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कंप्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कमाल साहब की लिखी हुई ये कहानी कहीं खो गई। लेकिन हाँ, गानों का कुछ हुआ। क्या हुआ आपको तो पता ही है, ऐसे इतनी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बताती हूँ। गाने सुनकर के वापस आओ, विल लेट यू नो पूरी कहानी ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूं श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
5: ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना
6: हिट, हिट, हिट, हिट, हिट गाना
7: हिट.

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है, और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं अच्छा, आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं, और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
1: कई साल पहले की ये बात है,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: का जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Har gana hit, har dusra gana super hit.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Ego suffering create करता है, जिसके कारण हम अपनी life enjoy नहीं कर पाते हैं. आइए इस बारे में जानें.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: तो अभी मैं इन दोनों दोस्तों क्या बोलूं, क्योंकि अभी इस वक्त भी झगड़ा चल रहा है और मैंने समझाने की कोशिश की तो दोनों मेरे पे बरस पड़े. जब अकेले फोन किया, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुमको लगता मैं ही गलत हूँ. मैंने कहा भाई मैं गलत सही पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ छोटी सी जिंदगी है यार, हंस खेल के जी लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है. तो कहता नहीं, हम तो सॉरी नहीं बोलेंगे,
4: हम तो इतना ही कर सकते हैं. एक्चुअली वी कांट डू अ लॉट फॉर अदर पीपल. हम इंस्पायर कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, हम वैसा रोल प्ले कर सकते हैं. इट इज देयर अंडरस्टैंडिंग कि हम इतनी छोटी बात पर क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं. जैसे आपने कहा कि हम मिले हैं मिलने के लिए, कुछ मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए, तो वो तो उनकी एक रियलाइजेशन है. दैट इज द प्रॉब्लम ना, वो ईगो हमें लाइफ एंजॉय नहीं करने देती. ईगो सफरिंग क्रिएट करते हैं. ईगो को अगर हम पार हो जाएं, देन ओनली वी कैन एंजॉय लाइफ. ठीक है, आप डिफरेंट हैं, आपको जो खाना है आप खाओ, मुझे जो खाना है मैं खाऊं, आपको जहां जाना है आप जाओ, मुझे जहां जाना है मैं जाऊं. वी डोंट इंटरफेयर एंड कंट्रोल द अदर पर्सन. ईगो इज ऑलवेज वेरी वेरी कंट्रोलिंग एंड सफोकेटिंग द अदर.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.

डेस्टिनेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। अब एक भाई साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरा जो बेटा है वो MBBS फोर्थ ईयर में है, मैं उसे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना कैसे सिखाऊं, वो रिएक्ट करता है आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनने से ही, और बिल्कुल पसंद नहीं करता है सजेशन, और कभी कभी उसे ऐसा लगता है, वो कहता है कि ये ओल्ड पीपल के लिए, बूढ़े लोगों के लिए है, वो सुबह उठता भी नहीं है और ना ही जल्दी सोता है। अब मैं क्या करूं?
2: कहीं ना कहीं ये भी हमारी कंट्री में एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है कि स्पिरिचुअलिटी बूढ़े लोगों के लिए है या आफ्टर 60 है। ये बिल्कुल ऐसे कहना है कि पहले तो लाइफ के सारे एग्जाम्स दे लो, और उसमें कहीं पास हुए कहीं फेल हुए, और फिर पढ़ाई पढ़ेंगे कि वो एग्ज़ाम्स कैसे देने थे। तो स्पिरिचुअलिटी एक वे ऑफ लाइफ आपको सिखाती है। अगर वो वे ऑफ लाइफ हम आज नहीं सीखते, बाद में जब कई लोग आते हैं ना हमारे पास भी, तो उनको बहुत बड़ा रिग्रेट ये रहता है कि हम पहले क्यों नहीं आए। अगर हम पहले आते तो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे डील करते, रिश्तों में ऐसे चलते। सो अगेन, इसको ये माइंडसेट नहीं बनाए दैट इट इज़ फॉर ओल्ड पीपल, क्योंकि हम है ही स्पिरिट, वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग इन अ फिजिकल बॉडी। हम फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल बीइंग इन अ फिजिकल बॉडी है। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। सेकेंडली, हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। इंस्पायर करने का तरीका भी बहुत बोलने का नहीं होता, आप ये करो आप ये करो, ये जो कई बार थोड़ा नैगिंग जैसा हो जाता है बार बार, मुझे नहीं लगता आज की जेनरेशन पर ये बहुत वर्क करता है। पहले करता था कि नहीं वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन जो चीज़ वर्क करती है वो है किसी का ट्रांसफॉर्मेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फादर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जीते हैं, और उनके अंदर का जो चेंज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो काम है, स्टेबल है, डिसीजन ले पाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ही किसी को इंस्पायर कर सकता है। तो इसीलिए अगर उन्होंने राय दे दी, उन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया, अभी वो ऐसा वे ऑफ लाइफ अगर बनाएंगे, सो मे बी दैट विल इंस्पायर द चाइल्ड।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Shreya, only on Mirchi. It's hot.
1: जब हम हॉट फील कर रहे होते हैं तब क्या करें?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जब ये खाने वाली बात हुई तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सारे क्विजिन मिलते हैं।
4: क्या है उसमें?
3: उसमें भी झगड़ा हो गया कि पिछली बार में हमने ये किया था तो मेरी बात तो तुम कभी मानोगे नहीं, हर बार हम ऐसी जगह जाएंगे। मैंने कहा यार इस बात का तो कोई तोड़ नहीं है ना कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको हर बात से प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं दोनों को ये लगता है कि तुम दूसरे के साइड लेते हो।
4: मेरी बात
3: नहीं मान रहे
4: हो। क्या है? मेरी बात
3: नहीं मान रहे,
4: मेरी बात माननी चाहिए, वरना जब मेरे अनुसार होगा तो मैं खुश होऊंगा।
3: तो ऐसे में तोड़ के सामने वाले को अगर समझाना, खुद को भी समझाना, कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं भी करता हूँ, तो क्या व्हाट इज द साइन जहाँ पे ऐसा लगे यार अब इस बात को काटनी है मुझे?
4: साइन यही है, साइन सबसे बड़ा साइन है कि अगर मुझे हर्ट हो रहा है, ये उस व्यक्ति को रियलाइज करना है कि अगर मैं इंसल्टेड फील हो रहा हूँ या मुझे लगता है उसको ये फील हो रहा है ना, मेरी बात नहीं मानी जाती, मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, दैट मींस आपको ईगो है, आप हर्ट हो रहे हैं ना, सामने वाला तो हर्ट नहीं हो रहा। तो जब हम हर्ट हो रहे हैं तो हमें साइलेंस में देखना चाहिए मैं कौन सी बात से इतना अटैच्ड हूँ, क्योंकि मेरे वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डांस टू आवर ट्यून्स, ये होने वाला ही नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा इजी नहीं होते तो फिर हम दर्द में रहेंगे। इट इज लाइक आई एम गोइंग टू लिव इन पेन।
3: मैंने बहुत खूबसूरत सी एक कई कोट पढ़ा तो मुझे अभी अचानक याद आ गया कि जब हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हम नाखूनों को काटते हैं, उंगलियों को नहीं। उसी तरह जब हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए तो ईगो को काटिए, रिलेशनशिप को नहीं।
4: Absolutely.
3: तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे, तो मैंने कहा ये
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म।

कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। श्रेया, बबलू वर्मा जो हैं वो सुरेश वर्मा के बेटे हैं, बख्शी का तालाब लखनऊ से लिख रहे हैं कि मैं आपका कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 7 से 7:30 तक अपनी कार ड्राइव करते हुए स्कूल जाते समय सुनता हूँ। और ग्रेजुएट 2008 में मैं कर रहा था तो मेरे एनसीसी के सर ने मुझे ऑलवेज बी पॉजिटिव का थॉट दिया और हर घटना में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूँ, मैं ये सोचता भी हूँ। आज तक मेरे साथ जो भी हुआ सब अच्छा होता हुआ, ये मैं ये सोचता हूँ। मेरा प्रश्न सिस्टर श्रेया से ये है कि हम जो योजना बनाते हैं वो कार्य लगातार नहीं हो पाता और कुछ और ही हो जाता है, ऐसा क्यों?
2: हम कई बार ये सबको सिखाते हैं कि अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव, और उसके बाद भी हम कई बार देखते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा।
1: जी,
2: तो हमें लगता है मैंने जैसा सोचा वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि लॉ भी है संकल्प से सिद्धि। लेकिन इसमें एक चीज और है, एक फैक्टर जो हमें दिखाई नहीं देता पर हर समय काम कर रहा है।
1: जी,
2: पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरकनेक्टेड है।
1: जी,
2: तो जो हमने पास्ट में किया था, जो एनर्जी हमने भेजी थी, जो कर्म हमने किया था, वो कई बार लौट करके आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन कि आपके घर में कोई बीमार है। आप अच्छा सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप हर बार जब जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, अभी ठीक नहीं है, या पैरामीटर्स ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है मैं तो सही सोच रहा हूँ, फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं?
1: जी,
2: हम सही सिर्फ इसलिए नहीं सोचते हैं कि हम सही सोचेंगे तो बाहर की जो सिचुएशन है वो हमेशा ही चेंज हो जाएगी।
1: जी,
2: क्योंकि बाहर की जो सीन है वो उस व्यक्ति का भी कार्मिक अकाउंट है, आपका भी कोई पुराना कार्मिक अकाउंट है। लेकिन फिर भी सही सोचना क्यों है? क्योंकि फिर भी सही सोचने से कम हमारा मन तो शांत और स्टेबल है। और जब हमारा मन शांत और स्टेबल है तो जो भी चैलेंज होगा हम उसको फेस कर पाते हैं। There is also a possibility कि आपने बिल्कुल सही सोचा, उसके बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हुई। ये possibility है। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ पास्ट का कार्मिक अकाउंट है या कोई बीमारी है, लेकिन अगर वो इंक्रीज भी हो जाती है, टू एन एक्सटेंट वो शरीर भी छोड़ देते हैं, तो भी अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप इतने बड़ी सिचुएशन को भी बहुत स्टेबिलिटी से फेस करके उनको दर्द भरी विदाई देने की जगह दुआओं भरी विदाई दे पाएंगे। सो ट्रू, जरूरी नहीं है हर चीज हमारे अनुसार हो, बिकॉज दैट वन फैक्टर, वो वन फैक्टर जो है पास्ट का, जो हमें याद नहीं रहता। लेकिन हम सोल ऑन अ जर्नी है, तो वो सोल ने जो जो कर लिया है, जो एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स में भेज दी है, वो किसी ना किसी रूप में, चाहे बीमारी के रूप में, धन का पेपर, डिफिकल्ट रिलेशनशिप, कोई चैलेंज के रूप में आता है। आज सही सोचेंगे तो वो सेटल हो जाएगा। लेकिन आज भी अगर गलत सोचेंगे तो देयर चांसेस कि आप उसको और बढ़ा रहे हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ऐसे हो कि जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: ईगो है क्या? आइए ईगो के बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। मैं एक एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बहुत खूबसूरत सी बात, एक बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम कोच हैं पैट राइली, तो वो कहते हैं कि ईगो इज द डिजीज ऑफ मी। जहां मैं आ गया, मैं जहां हावी हो गया ना, वो ही ईगो है। बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने सिखाया। और वो दो चीजें और उसमें कहते हैं कि जब सेल्फ इमेज जो है उसका जो कंसर्न है वो ऑब्सेशन में बदल जाए, और जब कॉन्फिडेंस जो है वो एरोगेंस में बदल जाए, वो ईगो है। और फिर वो बहुत लंबी चौड़ी बात कहते हैं, तो मुझे उसमें ये डिजीज ऑफ मी बड़ा अच्छा लगा। और एक और बहुत साल पहले मैं एक चीज देख रहा था, तो वो लीडरशिप की सेमिनार ले रहे थे वो इंसान, वो कह रहे थे कि वी मस्ट को हमको हमेशा मारना है। वी मस्ट क्या है? वी आई मी अस। तो वी मस्ट जो है ये डिजीज है, इसको काटो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, यू देम। तो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी, लेकिन ये बोलना बड़ा आसान है और इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है इंडिविजुअल हैं, हम अपने बारे में ही सोचते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सेट्रा। तो ये भी क्या अहंकार का ही रूप है?
3: अहंकार का जो रूप है, जो हमने कहा कि सिर्फ आए नहीं लेकिन वी के बारे में हम सोचे, सो कभी कभी हमें हमारे आइडिया, हमारा तरीका, हमारा उसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, और जब वैसा होता है तो हमें सुपीरियर फील होता है।
2: जी।
3: जो आप ऑब्सेशन की फील करें, मुझे सुपीरियर फील होता है। जब मुझे फील होता है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो मुझे खुशी फील होती है।
2: हाँ, बिल्कुल, हर इंसान को होता है।
3: हाँ, ये ईगो है। जो हम ईगो की बात करते हैं ना, वो इतनी सी चीज की भी हो सकती है, मेरा आइडिया, मेरी राय, मेरा तरीका, मेरा काम करने का तरीका, मेरा टीम को मैनेज करने का तरीका, मेरा भाषण करने का तरीका, वही राइट है और वही सुपीरियर है, एंड दैट्स व्हेन आई फील वैल्यूड। लेकिन जब हम वी में जाते हैं, तो वी में देयर इजंट अबाउट सुपीरियर एंड इनफीरियर,
2: इट्स अबाउट इंक्लूसिविटी,
3: इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी। इसीलिए कभी कभी जब हम टीम्स में भी बैठते हैं, तो ये आपने कई बार देखा होगा, जब आप टीम्स में बैठते हैं और कई सारे मुद्दों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, तो कई बार बहुत क्योटिक हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कुछ निकलता नहीं है। एक चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए, सब बैठे हैं, हमने ये भी देखा सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, सबके परसेप्शन अलग हैं, कोई भी राय जब हम देते हैं, जब हम आइडिया देते हैं, हमसे पूछा गया ना, तो हम मालिक बन करके दें।
2: अच्छा।
3: लेकिन फिर जब डिसीजन का टाइम आए, तो बालक बन जाए।
2: अच्छा, जब राय दें तो मालिक बन के दें, ओनरशिप के साथ, और जब डिसीजन का टाइम आए तो बालक बन जाएं। क्यों ऐसा?
3: क्योंकि डिसीजन वो होना चाहिए
2: जो सबकी राय से
3: मेजॉरिटी को ठीक लगता है।
2: हाँ।
3: और जिसमें कंपनी का, घर का, सेवा का बेनिफिट समाया हुआ है। इट इज नॉट अबाउट मी, बट इट इज अबाउट द सक्सेस
2: ऑफ दैट आइडिया,
3: ऑफ व्हाटएवर, मतलब जो भी, जिस भी चीज के लिए हम बैठे हैं। ये है थोड़ा सा अपने को अनलिमिटेड लेकर के जाना, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मी। आखिर हम बैठे हैं तो हम किस लिए बैठे हैं? कि ये जो आइडिया है उससे इस कंपनी को बेनिफिट हो, सफल हो, ये सेवा जो हम कर रहे हैं सफल हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपसे कुछ पूछा गया, आपने आइडिया दिया, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। सेकेंड टर्म फिर मीटिंग में बैठे, उन्होंने पूछा, फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ। थर्ड टाइम आपका मन कहना शुरू करता है,
2: ये तो मेरी बात के, मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे।
3: ये ईगो है, कितना सटली आता है। आप इन्फीरियर फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका आइडिया एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती, आप 10 बार भी आइडिया देते, अगर वो आपको पूछ रहे हैं तो आपकी वैल्यू है ना, नहीं तो वो आपसे पूछते ही क्यों।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया।

कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक सवाल आया है कि एग्जाम का डर है, पेरेंट्स को 95% चाहिए और परसों मेरा एग्जाम है, बैक टू बैक पेपर्स हैं, कोई छुट्टी नहीं है, सेकेंड टाइम मैं 12th का एग्जाम दे रही हूँ, इसीलिए बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ?
2: इसमें कई सारी बातें। पहले तो आप, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए पर उसमें 95 ही होना चाहिए, और आउटकम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो सकते। गोल भी रियलिस्टिक सेट करना होता है, हर एक को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो आउटकम सेट करना चाहिए। That is one thing. Second thing, अगर आपके back to back papers हैं, तो आप इन दिनों में सिर्फ revise ही कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: आप इन दिनों में बहुत पढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर आपने साल भर पढ़ा होगा, तो ही आप खुद ही सोचे, back to back papers हैं, तो हम कितना ही समय हमें मिलता है, उसमें rest भी चाहिए, उसमें आपको relaxation भी चाहिए, so इसीलिए साल भर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। Thirdly, fear कमजोर मन की रचना है। अगर आपको डर लग रहा है तो आपने जो पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो सारे जो थॉट्स आपको आ रहे हैं, नई मार्क्स आए तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फिर से फेल हो गए तो क्या होगा, उन थॉट्स को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। अपने को कहना है, मैंने बहुत एफर्ट किया है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मेहनत करी है, अब मुझे बहुत स्टेबल स्थिति में जा कर के एग्ज़ाम देना है, और जो आउटकम आएगा बहुत अच्छा आएगा
1: जी,
2: बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, पहले तो पेरेंट्स को भी इस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए, वो बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर ऐसा होता है कि आप किसी के ऊपर 20 किलो का वजन रखो और उसको बोलो अब चलो, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये जरूर कहना चाहिए, अच्छा करो, कैपेसिटी से ज्यादा का गोल रखो, टारगेट रखो, लेकिन कैपेसिटी किसी की हो 60 की और आप गोल रखो 90 का, तो वो भी तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने साथ बात करके आप एग्जाम दें, बहुत अच्छा होगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमें ये समझना है हम अलग और हमसे एसोसिएट चीजें अलग हैं। आइए इस बारे में समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर जरूरत नहीं होती तो वापस नहीं पूछते, तो आपकी कदर है, हम अपने आप को ही उसमें डिमिनिश कर रहे हैं।
4: क्योंकि हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट आई एम समथिंग व्हेन माय आइडिया गेट्स एक्सेप्टेड और वैलिडेटेड। सो आई एम आइडेंटिफाइंग विद माय आइडिया। मैं अलग हूँ, मेरा आइडिया अलग है।
3: बहुत बढ़िया।
4: मैं अलग हूँ, मेरा काम अलग है। मैं अलग हूँ, मेरा रोल अलग है। हम हर चीज से आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
3: बहुत खूबसूरत।
4: आइडिया तो फिर भी बहुत सटल है। बॉडी, अभी आप देखो बॉडी आज कितना ज्यादा, आजकल बॉडी इमेज, बॉडी शेमिंग, बॉडी ट्रोलिंग, ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये भी तो एक आइडेंटिफिकेशन है कि बॉडी ऐसी होनी चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: अब वो भी कौन डिसाइड करेगा? उसके भी कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है। अब आपका कोई ओपिनियन है मेरी बॉडी के प्रति, आप कुछ भी कहते हैं, सो मेनी पीपल आर फीलिंग एंशियस, डिप्रेशन तक में भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं लगता मैं सुंदर हूँ। आप कुछ भी कह देते हैं, मैं, मुझे ये याद नहीं है कि मेरी बॉडी है। एक छोटा सा ही तो डिफरेंस है ना, मेरा शरीर है, मेरी गाड़ी है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन मुझे लगता है मैं गाड़ी हूँ। जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं, अब एक पर विजुलाइज करके देखें, हमने नई गाड़ी खरीदी, बाहर पार्क करके हम अंदर ऑफिस में आ गए। अब आप जब शाम को गए पार्किंग लॉट पर, तो आपने देखा कि किसी बच्चे ने खेलते खेलते कॉइन से उसको स्क्रैच कर दिया था। उस समय आपको क्या लगता है किसको स्क्रैच किया?
3: मेरे शरीर पे उसने खरोंच दिया।
4: आपको बिल्कुल नहीं लगता कि गाड़ी को स्क्रैच किया, आपको लगता है जैसे उसने मुझे स्क्रैच कर दिया। उस मोमेंट में आप भूल गए होते हो कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कार, इट्स माय कार, मेरा कार है। शरीर भी छोड़ो अभी तो, और मटेरियल, मेरी कार है, टेम्पररी है, कुछ भी उसको हो सकता है, लेकिन वो वहां पर है। पर दुख किसको हो रहा है?
3: मुझे।
4: बिकॉज यू आइडेंटिफाई विद दैट कार। इन दैट मोमेंट आपको बिल्कुल याद नहीं है आई एम सेपरेट फ्रॉम समथिंग दैट आई हैव एक्वायर्ड।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सोनिया रजोरिया है, वो पूछती हैं कि मेरा बेटा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है और वो सोचता है कि उसे सब कुछ आता है और इससे वो अपने एग्जाम्स में आराम से पास हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ और कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनता। प्लीज़ मेरी मदद करिए, इस सिचुएशन से मैं कैसे डील करूं? मेरा बेटा जो है वो एग्ज़ाम में फेल हो गया है, इसके बावजूद कि मैंने उसे बोला था कि तुम पढ़ो और ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बच्चों के इस एटीट्यूड को कैसे तोड़ें?
2: अगर हम उस समय पर हैं कि वो फेल हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके घर की करंट सिचुएशन है, तो पहली चीज़ ये बिल्कुल नहीं कहना मुझे पहले से पता था, मुझे तो पता ही था, ये तो होना ही था। ये हो जाता है कई बार, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो दिख ही रहा था ये चीज़। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भले वो ओवर कॉन्फिडेंट था, अब जब वो फेल हो गया है तो उसका उसके मन पर ज़रूर इम्पैक्ट होगा।
1: बिल्कुल।
2: इसलिए एज अ पेरेंट जब कोई किसी फेलियर से गुजरता है तो पहली चीज़ होती है उसके मन को शक्तिशाली बनाना।
1: अच्छा,
2: सिखाएंगे बाद में। वो तो सिखाना ही है, लेकिन आप कमजोर मन को तो नहीं सिखा सकते ना। आप कमजोर मन को शिक्षा नहीं दे सकते। मैं अभी आपसे चलते चलते गिर जाऊं, अपनी गलती से भी गिरूं, तो भी आप पहले क्या करेंगे?
1: पहले उठाएंगे,
2: पहले ध्यान देंगे, फर्स्ट एड देंगे, फिर जरूर मुझे सिखाएंगे कि आपको देख करके चलना चाहिए, आपको ध्यान से चलना चाहिए, आपको फोन पर टाइप करते करते नहीं चलना चाहिए। शिक्षा इज ऑलवेज सेकंड। पहले आपको उस व्यक्ति को हील करना पड़ता है। सो अगेन, अगर वो फेल हो ही गया है तो वो गिल्ट में भी होगा, उदास भी होगा, थोड़ा सा जो भी उसके इमोशनल टर्मोइल होगी, एज अ पेरेंट आपका रोल है पहले उसको बाहर निकालना, उसका स्वमान बढ़ाना। हो गया जो हो गया, अभी फुल स्टॉप लगाओ, आगे क्या करना है। इट इज ओके, एक बार आप फेल हुए इसका मतलब आप फेलियर नहीं हो।
1: हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना।
2: पेरेंट ही लेबल कर देते हैं
1: कि तुम फेलियर हो,
2: आप फेलियर हो, मुझे तो पता ही था, ये तो दिखाई दे ही रहा था, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप फेलियर हो। वो जो आप रंग रंगते हो ना बच्चे की एक इमेज, वो जीवन भर उसके साथ चलते
1: हैं। वो ज्यादा उसे परेशान करेगी,
2: क्योंकि लाइफ में मार्क्स आपको फर्स्ट जॉब दिलाते हैं, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो आपको लाइफ टाइम मदद करता है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।

ऑफिशियली ट्यून इन टू मिर्ची मॉर्निंग्स। अब चाहे फिलहाल तुम किसी भी जगह पर हो या फिर अपने घर के किसी भी कोने में हो, ये आवाज अलार्म से ज्यादा पावरफुल होती है। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स के स्टार्ट होने की आवाज। आज का रूल काफी सिंपल है, कॉफी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मूड बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाने लेकर आयो तुम्हारे लिए मिर्ची दार, और साथ साथ में अराउंड द वर्ल्ड की खबरें हैं, बॉलीवुड की थोड़ी गपशप है, यहाँ वहाँ की बातें हैं, अपडेट्स हैं एंड अ लॉट मोर, बिकॉज मॉर्निंग्स जो है बेसिकली लाइफ का लोडिंग स्क्रीन होता है। एंड मिर्ची मॉर्निंग्स इज हियर टू मेक श्योर कि तुम बफरिंग में नहीं बल्कि भंगड़ा मोड में आज का दिन शुरू करो एकदम मिर्चीदार तरीके से। सो बकल अप बिकॉज आने वाला है बहुत कुछ। अगले कुछ घंटों के लिए तुम और मैं साथ साथ में इस दिन को बनाएंगे और ज्यादा मिर्चीदार। एंड हे, मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे अभी के भी फॉलो करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Chica.

0: आरसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: किसी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: साथ।
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: अभी मेरे साथ हमारी अगली कंटेस्टेंट है। हेलो।
3: हेलो।
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: हाय, माय नेम इज फोरम।
2: हैप्पी राखी टू यू फोरम।
3: थैंक यू प्रिसिला, टू यू एज़ वेल।
2: थैंक यू सो मच। सो क्या तैयारियां चल रही है राखी की?
3: जी सब बढ़िया। मेरी एक छोटी बहन है जिनके साथ हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। इट्स ऑलवेज फन कि हम यूजुअली भाई बहन के लिए मनाते हैं, बट फॉर मी शी इज माई ब्रदर सिस्टर एंड माई इंस्पिरेशन।
2: व्हाट्स हर नेम?
3: हर नेम इज महक।
2: महक, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। टेल मी, आप कैसे मनाते हो राखी?
3: मैं यूजुअली अपने फैमिली के साथ मनाती हूँ विद महक। हम लोग उसका फेवरेट खाना स्वीट्स खाएंगे एंड यू नो बाहर जाएंगे।
2: क्या है महक का फेवरेट मिठाई?
3: ओ, महक रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिल्क केक बहुत पसंद है।
2: सो महक आपको राखी बांधती है, आप उनको राखी बांधते हो, एंड हैव यू टोल्ड हर व्हाट राखी मींस, लाइक राखी का क्या महत्व है?
3: शी इज ब्लाइंड एंड मेंटली चैलेंज्ड, सो उनको इतना समझ में नहीं आता है, पर मेरे लिए तो मेरा होल वर्ल्ड है। तो हम मोस्टली रेडियो वो आपको सुनती है काफी बार। उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो बस उनका फेवरेट प्लेलिस्ट लगाते हैं, हम साथ में खाना खाएंगे और बस।
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

Chi New York. It's hot.

0: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी, आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
0: नहीं नहीं, देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का किला, उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
1: अरे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं।
0: देखिए मैंने हमेशा कब लिया आपसे, हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
0: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत जो आप देने को मना कर रहे हो।
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
0: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
0: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
2: आई वॉन्ट टू टॉक टू Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: yes,
2: with us?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
2: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I am sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
2: Yes, sir, absolutely.
0: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam bhejne mein pad gayi.

0: साथ।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। और क्या तुमको पता है यश एंड कियारा आडवाणी की मूवी टॉक्सिक के कुछ इंटीमेट सीन्स जो हैं वो ऑनलाइन लीक हो गए डिस्पाइट द मेकर्स इशूइंग एन एंटी पायरेसी वार्निंग। अब ये जो सीन्स है ना, इनकी वजह से काफी बैकलैश जनरेट हो रहा है विद सम व्यूअर्स क्वेश्चनिंग कि स्टोरी में ये सीन्स कुछ ऐड भी कर रहे हैं समथिंग मीनिंगफुल या नहीं। वन फिल्म क्रिटिक इवन सजेस्टेड दैट रिलाइंग हेवली ऑन सच सीन्स कुड इंडिकेट अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन the script. While reactions online have been debating just how much of this content the movie really needs. वैसे पिक्चर रिलीज हो चुकी है और काफी बढ़िया रिव्यू आ रहे हैं इन अ नेगेटिव वे। लेकिन रिमेम्बर यार, लीक्ड कंटेंट जो है उसे शेयर करना इज एब्सोल्युटली नॉट कूल। सपोर्ट द फिल्म इंडस्ट्री बाय वाचिंग मूवीज थ्रू लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वर्थ चेकिंग आउट, तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। गेट अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, वाओ। एंड साथ साथ में अगर तुम्हारे पास कोई पुराना गोल्ड कहीं पड़ा हुआ रखा है उसे लेकर जाओ, 18 कैरेट से अबव होगा तो एक्सचेंज कराने पर 0% डिडक्शन मिलेगा तुमको एट तनिष्क, जहां पर फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है, ऑफ कोर्स विद कंडीशंस अप्लाइड। एंड अभी चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स, जहां पर आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स, ऑफ कोर्स विद मी। बोलो तो प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट भी कर लो इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स राइट 9033647244। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: आरसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: heart.
1: Nanak Food presents Mirchi Karega Bandhan Pura.
2: Agle participant hamare saath mein hai. Hi.
3: Hello. How are you?
2: I'm good. What's your name?
3: My name is Naisho.
2: Happy Rakhi to you.
3: Same to you.
2: To kya taiyari chal rahi hai Rakhi ki?
3: I will go to Texas because my sister lives in Texas. So I will go there and I will surprise her.
2: To ye har saal aap karte ki is saal special plan hai?
3: ये स्पेशल प्लान है बिकॉज अभी तक मेरी सिस्टर यहाँ ही रहती थी न्यू जर्सी में लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है.
2: Wow, what's her name?
3: Oh, my sister name is Vishwa.
2: Vishwa, हर साल बचपन से आप राखी कैसे मनाते हो?
3: बेसिकली वो मेरे घर पे आती है, राखी एक्सचेंज करते हैं. बेसिकली वो मुझे राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ. लंच और डिनर डिपेंड्स व्हाट टाइम इज हैपनिंग. हम लंच के डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, मॉल में घूमते हैं. बट लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है इसलिए मैं टेक्सास जाऊंगा. फिर देखते हैं कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं.
2: बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां ना बड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू गिफ्ट एनीथिंग.
3: वो तो है लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी इजी है. मैं जो देता हूँ वो ले लेती है.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

0: दिल्ली स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात की दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट

0: साथ।
1: हेलो हेलो, सोना कितना सोना है, लेट्स फाइंड आउट। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,600. $4,600 per trillions per hour. Market stable ho gayi. Aiye gold mein invest kare. Gold bars, 1 ounce, 100 grams, kilo bars, PAM certified, gold and silver bars available at RajJewels.com. Gold mein responsibly invest kare. Or 22-carat gold jewelry, 18-carat colorless diamond jewelry. GI certified natural diamond में invest करने के लिए 0% interest, 0 down payment के साथ आज राज ज्वेल्स के special financing option को avail करें, जिसमें आज ज्वेलरी gold price lock करके घर ली जा सकते हैं approve होने पे, और 9 installments में बिना किसी hidden fee, बिना किसी interest के gold jewelry आपकी gold price आज lock करेंगे, और अगर गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो उसका बेनिफिट आप रखेंगे। फुल पेमेंट के बाद आपका क्रेडिट कार्ड अगेन आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट परचेज के लिए। आइए RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
1: एंड दैट वाज गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Fauci, New York.

0: वांछिका, आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई
1: हाँ
0: थी
1: जी,
0: विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी, हाँ
0: मैं
1: जी
0: सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
0: संतोष, संतोष,
1: संतोष।
0: संतोष। सो क्या चल रहा है
1: आप
0: अभी?
1: क्या
0: आपको
1: करते
0: डिस्टर्ब
1: हैं?
0: तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप
0: तो अभी ना
1: बताइए।
0: मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए, मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
1: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू डू?
0: आई एम एंथ्रोपोर, नहीं, आई एम एन आई एम एंथ्रोनोपोनर, नहीं, आई एम एम्पोटोनर, नहीं, आई एम एम्प्र एम्प्रतो एं एम्प एंथ्रोपोनो एंथ। दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के।

0: फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम नहीं पता होगा तुमको, तो पता करते हैं उन्हीं से। हेलो
2: हेलो,
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: पूर्णिमा।
1: हाय पूर्णिमा, हाउ आर यू?
2: गुड।
1: ग्रेट। क्या कर रहे हो राखी की तैयारी में?
2: राखी में मैं मेरे भाई के यहाँ जाती हूँ और वहाँ उसके राखी बांधती हूँ। पहले तो मैं उसके कपाल में कंकू का चांदला लगाती हूँ, चोखा लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ, और बाद में मैं उसके लिए स्वीट बनाकर ले जाती हूँ। वो स्वीट मैं प्रेम से खिलाती हूँ उसको।
1: तो ये सारी मिठाइयाँ आप अपने हाथों से बनाते हैं?
2: हाँ, एक दो स्वीट में हाथे से बनाती हूँ।
1: तो आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं?
2: बड़े हैं।
1: और वो क्या करते हैं आपके लिए?
2: वो मेरे लिए स्वीट लाते हैं और मुझे गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट देते हैं, गोल्ड की स्मॉल गोल्ड एयरिंग देते हैं या विटी देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं।
1: बचपन की कुछ मेमोरीज है आपकी राखी की?
2: या मेरे तीन भाई हैं, हम सब राखी के टाइम पर सब राखी बांधकर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हमें सब डिनर करते हैं और खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुश खुश साल में।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: एलएलसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।

0: It's hot.
1: Good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। फटाफट से पता करते हैं आज राशि में क्या लिखा है।
0: मिर्ची राशि जोन।
1: Aries यानी मेष राशि, क्रिएटिव प्लान थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट डोंट लेट दैट किल योर वाइब। ए गुड फ्रेंड या क्विक वर्कआउट मूड भी फ्रेश कर देगा और माइंड क्लियर भी कर देगा। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन। लकी नंबर इज 6। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पेंडिंग वर्क फिनिश करने का फुल जोश है आज। बस वर्ड्स को थोड़ा सा फिल्टर करके बोलना। कॉन्फिडेंस और मैं ही सही हूँ के बीच में एक थिन लाइन होती है। लकी कलर इज स्टील। लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज एक्टिविटी और डिस्ट्रैक्शन दोनों हाई हैं। फोकस को प्रोटेक्ट करो, बाउंड्री सेट करो और अगर पास्ट का कोई थॉट वापस आए किसी अपने से बात कर लेना। लकी कलर इज लैवेंडर। लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, समवन इन्फ्लुएंशियल कुड गिव योर कॉन्फिडेंस अ सीरियस बूस्ट, बस इमोशंस थोड़े से हैवी फील हो सकते हैं, सो टेक इट इजी। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट। लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, कॉन्फिडेंस इज लिटरली ग्लोइंग बट डोंट रश योरसेल्फ। हिडन टेंशन या जल्दी में बोली हुई बात मूड का विलन ना बन जाए। लकी कलर इज सैफरन। लकी नंबर इज 19। वर्गो यानी कन्या राशि, आज स्पॉन्टेनियस मोड ऑन कर लो, जो दिल में है बॉटल अप मत करो। किसी क्लोज फ्रेंड से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड सडनली लाइफ फील्स अ लिटिल लाइटर। लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन। लकी नंबर इज 8। लीब्रा यानी तुला राशि, वर्क प्रेशर या लिटिल स्ट्रेस आ सकता है बट डोंट लेट इट टेक ओवर। वार्मथ, सेल्फ केयर एंड सेल्फ प्लेजर्स, चाय, कंफर्ट फूड या फेवरेट सॉन्ग कैन कंप्लीटली चेंज द मूड। लकी कलर इज रोज पिंक। लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ओपिनियंस आज हर डायरेक्शन से आ सकते हैं, सबको कन्विंस करना जरूरी नहीं है। क्लोज फैमिली, लव्ड वंस या किड्स के साथ

लेने की जरूरत नहीं है. टेक सम फिजिकल रेस्ट एंड गिव दोस टायर्ड मसल्स सम लव. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 16. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, यू आर थरो फोकस्ड एंड गेटिंग थिंग्स डन, बट टुडे स्पेशली विद द लूनर इक्लिप्स एनर्जी, कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो. आर्ग्यूमेंट्स और रिस्की सिचुएशन नॉट वर्थ द हेडेक. लकी कलर इज चारकोल. लकी नंबर इज 22. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, थिंग्स कैन फॉल ब्यूटीफुली इनटू प्लेस, गिविंग यू दैट फाइनली वाली फीलिंग. ग्रेट डे टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल इंटरेस्ट और थिंक अबाउट योर फाइनेंशियल गोल्स. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 9. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी मीन राशि, लॉन्ग पेंडिंग बिजनेस नेगोशिएशंस कुड फाइनली मूव इन योर फेवर, बट विद द फुल मून इन योर साइन, रिलेशनशिप्स नीड अ लिटिल सॉफ्टनेस. Sometimes winning an argument is less important than keeping the peace. Lucky color is sea green. Lucky number is 31. And that was your Rashi Zone. Main hoon Prisula, tumhare saath mein connect karu mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: दिल्ली स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th

अच्छा जी, अब मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप का टाइम तो आ ही गया है. मैं हूँ प्रसला तुम्हारे साथ में. थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी दिस मॉर्निंग. तुमने चाय पी ली, कॉफी पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, कम्यूट कर लिया, ट्रैफिक को भी झेल लिया है और साथ साथ में अपने मॉर्निंग ब्लूज को भी कॉन्कर कर लिया है. जाते जाते याद दिला दो कि रक्षाबंधन स्पेशल कॉन्टेस्ट चल रहा है. मिर्ची करेगा बंधन पूरा, ब्रॉट टू यू बाय नानक फूड्स. दैट्स व्हाई दे आर गिविंग अवे अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स टू द विनर. और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम अभी के अभी आ रही चाय राखी टाइप करो, अपने पूरे नाम के साथ भेजो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माय नंबर 9033647244. याद रखो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो इजी पीजी तरीके से. फटाफट से इंस्टाग्राम खोलो, मेरा हैंडल ढूंढो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो क्योंकि अब कम दिन बचे हैं राखी में और बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ विनर, फटाफट से अभी इस कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करो इन एसोसिएशन with Virani Jewelers on Oak Tree Road with festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit karo viranijewelers.com for more details. Aur abhi chhod kar ja rahi hu tumhare liye mirchidar bangers. Tata bye bye from me. Milungi tumhe kal same time same place. First stay tuned and stay hot.

आपकी आवाज़ है, गुलजार साहब के लिरिक्स हैं पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ। हेलो हेलो वेलकम, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म घरौंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977 और ये साल एक सुपर डुपर हिट साल था। अगर हम फिल्म्स की बात करें, ये वो साल था जब मल्टी स्टारर फिल्म्स रिलीज हो रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बिग बैनर्स की रिलीज हो रही थी। फिर चाहे अमर अकबर एंथनी हो, परवरिश हो, हम किसी से कम नहीं हो। और ऐसे में अ वेरी लो बजट फिल्म विद अमोल पालेकर एंड यू नो जरीना वहाब, ये फिल्म ने भी अपनी जगह बना ली। इसी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं। अब अगला कौन सा गाना है ये मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी। सुन करके वापस आओ, कहानी और किस्से उस जमाने के अभी तो शुरू हैं। आगे आगे सुनो।

0: आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
1: जी
0: ये आपके अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी क्या के यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो।
1: मतलब
0: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
0: हाँ
1: भी चाहिए दिए हैं
0: तो
1: आपको,
0: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको, काम क्यों नहीं
0: क्या
1: करेंगे
0: यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
1: भाई साहब? आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
0: मैं क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है।
1: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए हैं, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन
0: हाँ
1: नहीं
0: तो
1: की।
0: काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
1: आप सही से काम करके देखिए ना,
0: मैं
1: काम क्यों नहीं करेगा?
0: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो
0: अच्छा
1: खुलेगा। क्यों
0: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं
1: जी?
0: लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि ले सर ले जाओ ले जाओ, बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। पांच खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में पांच लॉकर हैं, एक नहीं खुल रहा कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम, जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
1: कहाँ पे है तू?
0: बैंक में, बैंक में
1: अबे तू पागल है क्या बहन? क्या कर
0: देखा,
1: रहा है
0: अब
1: वहां पे?
0: उसारा
1: हैं?
0: अपने हथौड़ा ना चलने पर, अपना हथौड़ा ना चलने पे अब उसारा ने खोलूंगा
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार ये?
0: ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूंगा अब।
1: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो करना है कर, तू फोन रख, तू भाई तू मेरे
0: फोन
1: पास
0: रख
1: कॉल मत
0: देता हूँ
1: करियो,
0: ठीक है, मैं
1: मेरे
0: दौड़ा
1: पास
0: वापस कर रहा हूँ।

इंसान मूवी से ये गाना विच इज पिक्चराइज्ड ऑन ऋषि कपूर, इट इज संग बाय किशोर दा। सुनाने वाली कौन है आपको पुरानी जींस पे? करेक्ट, आपकी प्यारी श्रेया। अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आरडी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें। ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोरदा की आवाज़ ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज़ इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए। लेकिन भाई आरडी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। सो किशोरदा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक ओ हंसिनी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या।

0: आरसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab, mirchi kha.

हमेशा के लिए दरार डाल दी। मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब ये फिल्म लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ही वांटेड कि मनोज कुमार शुड डायरेक्ट द फिल्म। मनोज कुमार ने मना कर दिया। मनोज कुमार ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर चुके थे और उसके तहत अपनी फिल्म क्रांति, पहली फिल्म क्रांति बना रहे थे। सो ही पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन ये बात राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजेंद्र कुमार थॉट कि उन्होंने मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म दिखलाई थी, दैट वाज हरियाली, तो शायद दोस्त जो है वो इस बार फेवर रिटर्न करेगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। एनीवे, इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है। कमिंग अप आशा ताई का ये गाना फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, ओनली ऑन पुरानी।

आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, वो उस फिल्म का है जिसने रातों रात डेब्यू एक्टर्स को स्टार बना दिया था। एक थे कुमार गौरव और दूसरी थी विजेता पंडित। वेल, अगर आप रेट्रो फैन हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म ने एक्चुअली में

0: छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244, यानी 903-3 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड

साहब ने जीना तमान के लिए बनाई थी। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड ये जो फिल्म थी ना हीरा पन्ना, इसमें देव साहब और जीना तमन थे। अब क्यों ये फिल्म उन्होंने उनके लिए बनाई थी ऐसा वाई पीपल से, बिकॉज ये जो फिल्म थी उससे पहले आई थी हरे राम हरे कृष्णा, और उस फिल्म में देव साहब ने जीना तमन को लॉन्च किया था। जीना तमन उस फिल्म में देव साहब की सिस्टर बनी थी। ये फिल्म हिट होने के बाद ना इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे जीना तमन के, लेकिन सब बहन वाले। अब भाई जीना तमन तो ऑफ कोर्स हीरोइन बनने आई थी, तो देव साहब ने उनको इन सारे ऑफर्स को ठुकराने के लिए मना किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम हीरोइन होगी, लीड हीरोइन की तरह काम करोगी। एंड देन दिस फिल्म केम हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ऐसे

बहुत ही ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हीरो की हीरोइन भी बन चुकी हैं और हीरो की माँ भी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म शक्ति। राखी जी को सबने बेहद मना किया था कि ये फिल्म बिल्कुल मत करो, लेकिन राखी जी मानी नहीं। वेल, शक्ति में थी स्मिता पाटिल, बच्चन साहब, दिलीप कुमार एंड राखी जी। राखी जी जो बच्चन साहब के ऑलरेडी लव इंटरेस्ट बन चुकी थी इन द फिल्म कभी कभी एंड क्वाइट फ्यू फिल्म्स, वो ये फिल्म में बच्चन साहब की माँ बनने वाली थी। लोगों ने मना किया कि भाई मत करो ये फिल्म, लेकिन राखी जी को पता क्या इंटरेस्ट किया? दिलीप साहब की वाइफ बनना इन दिस फिल्म। सो शी सेड कि मैंने दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया, इस बहाने मैं दिलीप साहब की बीवी का रोल तो कर लूँगी। तो उन्होंने ये फिल्म शक्ति करी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना लेकर के आई थी मैं। मेरा नाम है श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल। तो बस गाने सुन करके वापस आओ।

0: कौन?
1: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये
0: हाँ
1: आपके
0: बताओ।
1: पास भी, पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
0: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
1: नहीं, देखिए, एक तो
0: आपके
1: मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का खिलाफ, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
0: अरे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते
1: नहीं,
0: हैं, कभी
1: देखिए,
0: कैश की
1: मैंने
0: सिलाई
1: हमेशा
0: कुछ
1: कब
0: ना
1: लिए
0: कभी
1: आपसे,
0: कभी
1: हमारे
0: जिंदगी में
1: नहीं,
0: कुछ
1: हमने
0: पैसे।
1: कब लिए आपसे?
0: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आपको करना है।
1: भाई
0: अब
1: साहब,
0: हर
1: एक
0: सौ रुपये
1: बात
0: तो तुम्हें
1: बताओ,
0: थोड़ा
1: आपके
0: पहले
1: पास
0: काम
1: साढ़े
0: चलेगा।
1: सात सौ रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे
0: अरे
1: हो?
0: साढ़े 700 रुपये मैं थोड़ी ना हर कुछ के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फसल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
1: आप नहीं दे रहे फिर?
0: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
1: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
2: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
0: Yes,
2: with us?
0: yes, yes, madam, I'm there. I understand. मैं समझ रहा हूँ आपको. What is the amount? क्या
2: Sir, it's just
0: कितना
2: seven
0: कितने
2: fifty
0: पैसे दे दें?
2: rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you how fond you are of trips, sir. So I am sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with
0: No,
2: this?
0: no, no, no, no, not an issue, not an issue. 750 only?
2: Yes, sir, absolutely.
1: ना 750 ना भाई, तेरे 1500 लगेंगे। हमारी बात समझ में ना आ रही, लाजवंती की एकदम गेज में बढ़ गई।

बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही थी इस फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, ये जो गाना है फ्रॉम द फिल्म याराना, जिसमें नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली बार काम कर रही थी। तो शी वॉज इतना इन ओ ऑफ हिम कि उनके मुंह से ना डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो जब सेट पे उनको पहली बार जब डायलॉग बोलना था ना, वो था देखो किशन कोई आ गया। नीतू जी इतनी ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इम्प्रेस थी कि उन्होंने कपकपाते शब्दों में कहा, देखो देखो अमित कोई आ गया। अब भाई नाम उनका किशन था, यानी बच्चन साहब का कैरेक्टर नेम, लेकिन अमित कहा उन्होंने। और काफ़ी टाइम के बाद किशन किशन किशन किशन प्रैक्टिस करने के बाद ना, तब जा करके वो अमित को साइड रख पाई थी। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की बात है, मेरे यानी श्रेया के साथ होती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

0: एजेंसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक। लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।

साहब ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा गाने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं उनमें से ये वाला अव्वल है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, रफी साहब का था ये गाना एंड लिखने वाले थे नीरज जी। कहते हैं पोएट नीरज कह लो आप, या फिर यू नो लिरिसिस्ट नीरज कह लो, कवि नीरज कह लो, भाई बातों के शब्दों के तो वो हमेशा धनी थे। एंड दे ऑलवेज से कि नीरज जी को ना अपने होम टाउन में एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो प्यार उनको कभी नसीब नहीं हुआ। और उस प्यार के लिए वो हर साल खत लिखा करते थे और उसे पोस्ट नहीं करते थे कभी। तो ये जो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे, ये एक्चुअली में उनका एक खत था। एंड इस खत को पढ़ लिया था रफ़ी साहब ने और उन्होंने कहा अरे इसको गाने में बनाओ ना, मैं इसे गाऊँगा। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: कंट्रोवर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन

देखने के बाद तो सलीम जावेद साहब ने जिंदगी बदल दी थी बच्चन साहब की। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहा के साथ, ये गाना फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा, एक ऐसी फिल्म जिसमें बच्चन साहब के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। दी ओनली हीरोइन हु अग्रीड टू वर्क विद बच्चन साहब इन दिस फिल्म वॉज अरुणा ईरानी जी। इस फिल्म को देखने के बाद सलीम जावेद साहब ने जब लिखी थी जंजीर, उन्होंने कहा कि उनको उनका लंबा घोड़ा मिल गया है। प्यार से बच्चन साहब को लंबा घोड़ा कहते थे दोनों। वेल, जंजीर के लिए बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन द स्क्रिप्ट राइटर्स यानी द एंग्री यंग मेन सलीम एंड जावेद जी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई ये फिल्म करेगा, अगर उनका कोई विजय होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब होंगे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया।

कपूर जी ने प्रॉमिस किया था सुभाष घई से कि वो कान पकड़ के ऋषि कपूर को ले आएंगे ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना करेक्ट इज फ्रॉम द फिल्म कर्ज। अब ये फिल्म करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषि कपूर साहब। सुभाष घई ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, वो यू नो इनिशियल स्टेज पे थे, बट वो ये री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे फिल्म बनाना चाहते थे। इस सब्जेक्ट ने ऋषि कपूर को इतना इंटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन रणधीर कपूर को किया था। एंड सुभाष घई चाहते थे कि उनके पास अवेलेबल तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, काका, बट ही वांटेड अ यंगर हीरो टू प्ले द रोल ऑफ मोंटी, और इसलिए ऋषि कपूर को कान पकड़ के रणधीर कपूर ले आए, और फिर तो मूवी वाज सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया श्रेया ने, कम राइट बैक।

0: आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
1: हाँ जी
0: ये आपके अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो।
1: मतलब
0: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
0: हाँ
1: भी चाहिए दिए हैं
0: तो
1: आपको,
0: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब भी तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको, काम क्यों नहीं
0: क्या
1: करेंगे
0: यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
1: भाई साहब? आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी के दिए आपको।
0: क्या क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है।
1: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं
0: तो
1: की।
0: काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
1: आप सही से काम करके देखिए ना,
0: मैं
1: काम क्यों
0: एक
1: नहीं
0: सेकंड,
1: करेगा?
0: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च जला ली, ठीक है, ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा।
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो
0: अच्छा,
1: खुलेगा। क्यों
0: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं
1: नहीं?
0: लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि ला सर ले जाओ ले जाओ, बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। पांच खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में पांच लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ ले जाओ, हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
1: कहाँ पे है तू?
0: बैंक में, बैंक में
1: अबे तू पागल है क्या? बहन क्या कर रहा है
0: अब
1: वहां
0: वो
1: पे?
0: सारा
1: हैं?
0: अपने हथौड़ा ना चलने पर, अपना हथौड़ा ना चलने पर, अब वो सारा ने खोलूंगा
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार ये?
0: ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूं आप।
1: अबे अबे भाई भाई भाई तू तू जो करना है कर। तू फोन रख, तू
0: फोन
1: भाई तू
0: रखो,
1: मेरे पास
0: फोन
1: कॉल
0: रख
1: मत
0: देता हूँ,
1: करियो,
0: ठीक है, मैं
1: मेरे
0: थोड़ा
1: पास
0: वापस कर।

जावेद की जोड़ी टूटने के बाद ये पहली फिल्म थी। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहे के साथ ये जो गाना आपने सुना इस फ्रॉम द फिल्म बेताब यानी धर्म पाजी के बेटे सनी देओल की डेब्यू फिल्म। और धर्म पाजी वाज द वन जिन्होंने अपने दोस्त जावेद अख्तर को ब्रेक दिया

0: जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest

आप हो श्रेया के साथ, और अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी फिल्म का है जो थ्रिलर फिल्म थी, लेकिन इट वाज नोन मोर फॉर इट्स म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म के लिए अपना फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट रफी साहब ने गाया है ये गाना। बताओ बताओ कौन सी फिल्म का है? करेक्ट, मूवी का नाम कर्ज, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बैक्ड फिल्मफेयर अवार्ड। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जी।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

पे अभिषेक के साथ अब चले हाईवे पे। ऑलराइट, तो जाने से पहले एक हाईवे हिट जो मैं डेडिकेट करके जाती हूँ, आज वाला ना किसी को डेडिकेट करने का मन नहीं है। ये एक ऐसा गाना है जो हम सबको पसंद है, और कभी कभी तो जब हम अकेले बैठते हैं ना तो इस गाने को सुन रहे होते हैं, स्पेशली इफ़ वी आर रेट्रो फैंस। मुकेश जी की आवाज़ है और गाना कौन सा है ये तो अभी आप सुन ही लोगे। तो ये सबका फेवरेट है, इसीलिए किसी खास बंदे के लिए नहीं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव। तो इस आवाज़ के पीछे का चेहरा देखना हो तो वहाँ आ सकते हो, कुछ वार्तालाप करनी हो वार्तालाप तो वो भी कर सकते हो। गुड नाइट।

0: रियलिटी शो पे शुरू हुआ था इनके 7 जन्मों का सफर।
1: श्रुति, श्रुति, श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं बात कर रही हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अल्टीमेट म्यूजिशियन एंड सिंगर डुओ सचेत टंडन एंड परंपरा ठाकुर, जो अब बन चुकी हैं परंपरा टंडन। एंड यू नो, अक्सर आपने अपने आसपास सुना होगा कि यार अपने वर्क स्पेस में ना आपको कोई रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप, कोई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नहीं रह जाती। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सचेत एंड परंपरा, जो मिले थे द वॉइस ऑफ इंडिया के फर्स्ट सीजन में और वहां शुरू हुई उनकी म्यूजिकल पार्टनरशिप। एंड इवेंचुअली बॉलीवुड गॉट द डुओ बिहाइंड बेखयाली एंड मच मोर लव्ड सॉन्ग्स। और आज अचानक इन दोनों के पार्टनरशिप की बात इसलिए चल रही है क्योंकि मेरे शो पे होने वाले हैं ये दोनों ही मिर्ची गिरफ्तार, जिनसे होगी इनके करियर, इनके लाइफ, इनकी पार्टनरशिप, सब चीज के बारे में डिटेल्ड बात। But all of that in a while, Babu Moshai. Abhi toh is giraftari ke alawa aur bhi bahut kuch planned hai on the show. But to enjoy all of that, you'll have to stay tuned to Mirchi. Main hoon aapke saath Shruti, it's hot.

0: सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
0: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का किलब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: अरे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे क्यों होते हैं? कभी
0: देखिए, मैंने हमेशा कब लिए आपसे? नहीं, हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
0: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
0: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
0: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
2: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: there? Yes, madam, I'm there. I understand, मैं समझ रहा हूँ आपको. What is the amount?
2: क्या कितना है? 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not the issue. 750 only?
2: Yes, sir, absolutely.
0: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.

आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हैंगओवर अभी उतरा नहीं था, दैट दूसरे नशे की तैयारी हो चुकी है। ओके ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, भाई मैं आवारापन 2 के हैंगओवर की बात कर रही हूँ जो अभी उतरा नहीं था, दैट प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने जन्नत 3 कंफर्म कर दी है, जिसकी स्क्रिप्टिंग इज अंडर वे एंड बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। ए आर रहमान तमिलनाडु से अगला सिंगिंग टैलेंट ढूंढने वाले हैं, तभी तो उन्होंने लॉन्च किया है तमिल आइडल। हां जी, द शो एम्स टू डिस्कवर, सेलिब्रेट एंड नर्चर द नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तमिल वॉइस। आगे शेक्सपियर ने भले ही कहा है व्हाट्स देयर इन नेम, बट ए आर रहमान का नाम अगर किसी प्रोजेक्ट पर जुड़ जाए तो उसमें तो चार चांद लगने ही लगने हैं। द रेवोल्यूशनरीज नाम की पीरियड ड्रामा सीरीज जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं निखिल आडवाणी, बैकड्रॉप होगा इसका इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, और इस सीरीज में रोहित सराफ, भुवन बम, गुरफतेह पीरजादा और जेसन शाह के साथ साथ लापता लेडीज फेम प्रतिभा रत्ना भी नजर आएंगी। इनफैक्ट उनके कैरेक्टर का प्रोमो भी आ चुका है, नहीं देखा देन गो चेक इट आउट। बाकी अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: आरसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: मिर्ची फिल्म, जी जहाँ मैं आपको कॉल करके कॉल कैसे करती हूँ, जब आप मेरे डीएम में यानी मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर भेजते हो तो कॉल करके मैं आपको इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैं प्रथम। हाय प्रथम, कैसे हो आप?
1: एकदम बढ़िया श्रुति, आप कैसे हैं?
0: मैं भी एकदम बढ़िया। तो चलिए दोनों और बढ़िया हो जाते हैं, फिल्म जी गेम शुरू करते हैं। तैयार हैं आप?
1: जी जी जी जी
0: ओके जी। डियर जिंदगी में आलिया को अपनी जिंदगी से प्यार करना कौन सिखाता है?
1: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान चिपकली वाले जूते किस फिल्म में पहनते हैं?
1: बादशाह।
0: बादशाह में विलन कौन है?
1: अमरीश पुरी।
0: अमरीश पुरी मोगैम्बो किस फिल्म में बने हैं?
1: अपना मिस्टर इंडिया।
0: मिस्टर इंडिया में गायब होने के बाद लाल लाइट में कौन दिखाई देता है?
1: अनिल कपूर।
0: अनिल कपूर किस फिल्म में इंग्लिश सीखने वाले भैया जी बने हैं?
1: टशन।
0: टशन में रूह चुराने वाली छलिया कौन है?
1: करीना कपूर।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो आत्मा बनी है?
1: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो आत्मा बनी है, तलाश।
0: तलाश में पुलिस वाले कौन है?
1: आमिर खान।
0: आमिर खान की फिल्म जिसमें वो क्रिकेट खेलते हैं?
1: लगान।
0: लगान की लीड एक्ट्रेस?
1: अरे क्या नाम भूल गया मैं तो उनका। ये तो मैं भूल गया श्रुति।
0: कोई बात नहीं, काफी टाइम भी हो गया उनको स्क्रीन पे देखे हुए, बट अच्छा खेला यार।
1: जवाब क्या था श्रुति, ये तो बताओ।
0: अब जब

0: किशोर सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: से। श्रुति श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। Yes, you guessed it right. It's time to find Mirchi Filmchi number 2 for the day. So basically, आपको मेरे Instagram DMs में अपना number भेजना होता है, फिर मैं आपको call करके इस game की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले जुड़े थे प्रथम, but he got stuck at a point, और उसके आगे का game खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं अपूर्व। Hi अपूर्व, कैसे हो आप?
1: बढ़िया, I'm a big fan.
0: अरे यार मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। जो सवाल था वो है, लगान फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन है, आपको पता है?
1: The Indian one, right?
0: हाँ हाँ,
1: yeah, she is Gracie Singh.
0: Okay. Gracie Singh डॉक्टर किस फिल्म में बनी है जिसमें उनका नाम चिंकी है?
1: Obviously, मुन्ना भाई।
0: मुन्ना भाई वार्ड,
1: मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS।
0: मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी कौन देता है?
1: अपने संजू भाई ब्रो।
0: संजय दत्त कांचा चीना किस फिल्म में बने हैं?
1: अग्निपथ।
0: अग्निपथ में विजय दीनानाथ चौहान कौन है?
1: विजय दीनानाथ चौहान।

0: देखेगा आपका ये प्रोफाइल, देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई
1: हाँ
0: थी
1: जी,
0: विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी, हाँ
0: मैं
1: जी
0: सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
0: संतोष, संतोष, संतोष।
1: संतोष।
0: सो क्या चल रहा है?
1: आप
0: अरे
1: क्या
0: आपको
1: करते
0: डिस्टर्ब
1: हैं?
0: तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं, कोई बात नहीं, आप
0: तो अभी ना
1: बताइए।
0: मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए, मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
1: संतोष क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू?
0: आई एम एंट्रप्रेन्योर, नहीं आई एम एम्पोटोनर, नहीं आई एम एम्प्र एम्प्रत एं एम्प एंट्रप्रेन्योर एंथ। दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंस रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?

0: इंडस्ट्री ने।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं साउथ इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ बाबू मोशाय, जिससे टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे आइडियाज उठाए हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फिल्में लेकर आई हूँ जो साउथ इंडियन फिल्म्स के हिंदी रीमेक्स हैं। सबसे पहले हमने लिस्ट में बात की अबाउट द मूवी स्वदेश। अब नंबर दो पे हम बात करेंगे फिल्म हेरा फेरी के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2000, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। वेल, ये फिल्म जो है वो मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग पे बेस्ड है, जो 1989 में रिलीज हुई थी और उसको भी प्रियदर्शन ने ही डायरेक्ट किया था। फिल्म में कॉम्बिनेशन है ह्यूमर और अनएम्प्लॉयमेंट की हार्श रियलिटीज का, और हेरा फेरी में टाइमलेस कैरेक्टर्स, मस्त डायलॉग्स और अनफॉरगेटेबल केमिस्ट्री ने हम सबका दिल जीत लिया। तो अगर आपको हेरा फेरी पसंद है, देन मौका मिले तो रामजी राव स्पीकिंग भी जरूर देखिएगा। वे लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2009 और ये 2005 में आई तेलुगु फिल्म सुगाडू का हिंदी रीमेक थी। सो इस रोमकॉम ने तेलुगु फिल्म की स्पिरिट तो उठाई, लेकिन उसको ड्रेसअप किया लार्जर देन लाइफ बॉलीवुड कॉमेडी के साथ और दो अमेजिंग एक्टर्स के साथ, रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ। तो बाबू मोशाय, मेरी इस लिस्ट में अभी और दो ऐसी ही फिल्मों की डिस्कशन बाकी है, बट इन अ वाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: परसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: इंस्पिरेशन है ये।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ बाबू मोशाय, मैं साउथ इंडियन फिल्मों की बात कर रही हूँ, क्योंकि टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ से इंस्पिरेशन तो ले ही लेती है। तभी तो इतने सारे हिंदी रीमेक्स हैं ऑफ साउथ फिल्म्स। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट स्वदेश, नंबर दो पे हमने हेरा फेरी को डिस्कस किया, नंबर तीन पे अजब प्रेम की गजब कहानी, और अब बारी है नंबर चार पे फिल्म गुमराह को डिस्कस करने की। वेल, ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2023, डायरेक्टेड बाय वर्धन केतकर, जो 2019 में आए तमिल फिल्म थाडम के ऊपर बेस्ड है।

इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है। वैसे गुमराह जो है वो एक सस्पेंसफुल फॉर्मूला को कोर्टरूम ड्रामा के साथ मिक्स करके बॉलीवुड फैंस को ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ परोसी गई थी, विच डेफिनेटली कीप्स यू गेसिंग अबाउट द मूवी टिल द एंड। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे बात करते हैं अबाउट द फिल्म बिल्लू, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2009। और ये फिल्म 2007 में आई मलयालम फिल्म कथा परियम बोल का हिंदी रीमेक है। ऑल्दो अगर आप मलयालम वर्जन देखेंगे तो आपको शायद बिल्लू समझ में ना आए, लेकिन फिल्म की वार्म स्टोरी टेलिंग ने मेरा दिल तो पर्सनली जीत लिया था। वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर आप कोई ऐसी ही फिल्म को ऐड करना चाहें देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दिल्ली स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हैंगओवर अभी उतरा नहीं था दैट दूसरे नशे की तैयारी हो चुकी है। ओके ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, भाई मैं आवारापन 2 के हैंगओवर की बात कर रही हूँ जो अभी उतरा नहीं था, दैट प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने जन्नत 3 कंफर्म कर दी है, जिसकी स्क्रिप्टिंग इज अंडर वे एंड बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। AR रहमान तमिलनाडु से अगला सिंगिंग टैलेंट ढूंढने वाले हैं, तभी तो उन्होंने लॉन्च किया है तमिल आइडल। हां जी, द शो एम्स टू डिस्कवर, सेलिब्रेट एंड नर्चर द नेक्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तमिल वॉइस। आगे शेक्सपियर ने भले ही कहा है व्हाट्स देयर इन नेम, बट AR रहमान का नाम अगर किसी प्रोजेक्ट पर जुड़ जाए तो उसमें तो चार चांद लगने ही लगने हैं। द रेवोल्यूशनरीज नाम की पीरियड ड्रामा सीरीज जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं निखिल आडवाणी, बैकड्रॉप होगा इसका इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, और इस सीरीज में रोहित सराफ, भुवन बम, गुरफतेह पीरजादा और जेसन शाह के साथ साथ लापता लेडीज फेम प्रतिभा रत्ना भी नजर आएंगी। इनफैक्ट उनके कैरेक्टर का प्रोमो भी आ चुका है, नहीं देखा देन गो चेक इट आउट। बाकी अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

मतलब है वीक ऑफिशियली ऑन ट्रैक है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का दिन परफेक्ट है थिंग्स इन मोशन के लिए। प्लेलिस्ट लाउडर होने वाली है, मैसेजेस थोड़े फास्टर आने वाले हैं और प्लान्स का टोन सडनली अपग्रेड होने वाला है, क्योंकि यार थर्सडे वो स्वीट स्पॉट है जहाँ प्रेशर कम लगता है और एक्साइटमेंट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। फ्राइडे का ट्रेलर, वीकेंड का स्नीक पीक, तो यार ऑफिस हो या होम, आज एनर्जी का ग्राफ थोड़ा ऊपर ही रहने वाला है और हम भी उसी फ्लो में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि शाम शानदार का थर्सडे एडिशन फुल ऑन पेस पे चलने वाला है। तो आप भी मुझे बताइए कि आप आज किसके लिए रेडी हो, म्यूजिक, मस्ती या दोनों? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI विद योर थर्सडे मूड सॉन्ग। और तब तक के लिए मेरी थर्सडे मूड का ये रहा अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जी कौन?
1: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये
0: हाँ बताओ।
1: आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
0: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
1: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का खिलाफ, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
0: अरे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते
1: नहीं,
0: हैं, कभी
1: देखिए,
0: कैश की
1: मैंने
0: सिलाई
1: हमेशा कब लिया
0: कभी
1: आपसे? नहीं, हमने कब
0: कुछ।
1: लिया आपसे?
0: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
1: भाई
0: आप
1: साहब,
0: हर
1: एक
0: चीज
1: बात
0: होते तो
1: बताओ,
0: क्यों ना
1: आपके
0: पैसे
1: पास
0: कम
1: साढ़े
0: देंगे?
1: सात सौ रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर
0: अरे
1: रहे हो?
0: 750 रुपये मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फसल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
1: आप नहीं दे रहे फिर?
0: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
1: ना दे रहे, लाजवंती ना मान रहे।
2: आई वॉन्ट टू टॉक टू Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
0: Yes,
2: with us?
0: madam, I'm there. I understand, मैं समझ रहा हूँ आपको. What is the amount? क्या
2: Sir, it's just
0: कितना कितने
2: 750
0: पैसे
2: rupees.
0: देंगे?
2: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I am sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
0: No, not an issue, not an issue. 750 only?
2: Yes, sir, absolutely.
1: ना 750 ना भाई, तेरे 1500 लगेंगे। हमारी बात समझ में ना आ रही, लाजवंती की एकदम घेजे में पड़ गई।

भी कर दे और अगले ही गाने में आपसे डांस भी करवा दे यार, ये तो सिर्फ लाइव इन कॉन्सर्ट में ही हो सकता है। शाम शाम लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और एमी विर की प्लेलिस्ट खोलो ना तो मूड का रिमोट उनके हाथ में चला ही जाता है। फिर चाहे किस्मत जैसा गाना हो जिसमें दिल वाले एमी मिलते हैं, या फिर वंगा नाप हो जिसमें एनर्जी ही बदल जाती है, या फिर उनकी पंजाबी फोक वाली टेक्सचर आए तो यार गाने में एकदम देसी रंग भर जाते हैं। और इसीलिए लाइव इन कॉन्सर्ट का मज़ा ही अलग होता है, एक ही शाम में रोमांस भी, इमोशन भी, और फुल पंजाबी सेलिब्रेशन भी। तो दोस्तों ऐसी शाम आपके लिए आ रही है शुक्रवार को यानी अगस्त 28 को विथ एमी वर्क यूनिटी टूर 8:30 बजे से लेकर कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर में, कार्टरेट न्यू जर्सी में। और दोस्तों इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन, मतलब इवेंट का कैनवस ग्रैंड ही होने वाला है। तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम saiusainc.com या फिर sulekha.com। और अब बारी आती है मिर्ची लिसनर्स के उस स्पेशल कॉन्टेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टेस्ट बड़ा आसान सा है, आपको बताना है एमी विर्क का वो कौन सा गाना है जो आप उनसे लाइव सुनना चाहोगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो जल्दी से एमी विर्क टाइप कीजिए और मुझे DM कीजिए @RJMirchiSiddhi SIDDHI, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जवाब दे सकते हो @9033647244। जल्दी से जवाब भेजो और हो सकता है वो गाना इस फ्राइडे आप स्क्रीन पर नहीं सामने स्टेज पर सुन रहे हो। तो चलिए थोड़ा पंजाबी तड़का हो जाए एमी विर्क का, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एलसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab mirchi kha.

ऑफिस का बोर्डम दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सुरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कंट्रोवर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन

कुछ हीरोइंस का लुक ना फिल्म से निकल कर सीधा फैशन मेमोरी बन जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी माधुरी का आइकॉनिक इंडियन लुक, तो कभी दीपिका का ग्रैंड ट्रेडिशनल स्टाइलिंग, तो कभी करीना का एफर्टलेस ग्लैम। यार फिल्म ख़त्म हो जाती है लेकिन वो लुक याद रह ही जाता है, क्योंकि मेमोरेबल स्टाइल यूजुअली लाउड नहीं होता। आउटफिट, कॉन्फिडेंस और वो केयरफुली चोजन फिनिशिंग टचेस मिलकर ही उसे सिग्नेचर बना देते हैं। और रियल लाइफ में भी किसी की वेडिंग हो, पार्टी हो या स्पेशल इवनिंग, उस पर हम सबका अपना अपना एक हीरोइन मोमेंट तो बनता है। और उसी के लिए तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबाउट 18 कैरेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो मूवी स्क्रीन हो या रियल लाइफ, तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ अपना सिग्नेचर मोमेंट्स आप भी क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि बॉलीवुड की कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसका लुक आपको आज भी आइकॉनिक लगता है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरी फेवरेट हीरोइन का आइकॉनिक गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

जब कमिंग अप नेक्स्ट का मतलब सच में वेट करना होता था। शाम शाम लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका थ्रो बैक थर्सडे में। तो चलिए थ्रो बैक टू दोज टाइम जब यार संडे का इंतज़ार सिर्फ एक शो के लिए होता था। इसे सोचिए, आजकल तो एक क्लिक में पूरा सीजन मिल जाता है, लेकिन फ्राइडे रात का वो काउंटडाउन, क्योंकि यार फेवरेट मूवी टीवी पर आने वाली होती थी, उसका मज़ा ही अलग होता था। और अगर बीच में लाइट चली गई तो बस उस दिन का मूड ही ऑफ। और शायद इसीलिए उस वक्त एंटरटेनमेंट की वैल्यू भी अलग थी। हम देखते कम थे, इंतज़ार ज़्यादा करते थे, और शायद इंतज़ार ही उस खुशी को इतना बड़ा बना देता था। तो आज घर जाते हुए एक काम ज़रूर कीजिए, किसी पुराने टीवी शो का टाइटल सॉन्ग याद करने की कोशिश कीजिए और देखना पूरा बचपन बैकग्राउंड में प्ले होने लगेगा। और हाँ, मुझे ज़रूर बताना वो कौन सा शो है जिसके लिए आप टाइम से पहले टीवी के सामने बैठ जाते थे। DM me on Insta RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए उस जमाने की यादों को सलाम करते हुए सुनते हैं ये एवरग्रीन बॉलीवुड गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
1: जी
0: ये आपके अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी ये कह के यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो।
1: मतलब
0: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
0: हाँ
1: भी चाहिए दिए हैं
0: तो
1: आपको,
0: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको, काम क्यों नहीं
0: क्या
1: करेंगे
0: यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
1: भाई साहब? आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी के दिए आपको।
0: मैं
1: अरे
0: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है।
1: आप बढ़िया क्वालिटी के दिए हैं, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने
0: हाँ
1: कंप्लेन नहीं
0: तो काम
1: की।
0: तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
1: आप सही से काम करके देखिए ना,
0: मैं
1: काम क्यों नहीं करेगा?
0: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो
0: अच्छा
1: खुलेगा। क्यों
0: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं
1: जी?
0: लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि ला सर ले जाओ ले जाओ, बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। पांच खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में पांच लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
1: कहाँ पे है तू?
0: बैंक में, बैंक में
1: अबे तू पागल है क्या बहन? क्या कर
0: देखा
1: रहा है
0: अब
1: वहां पे?
0: गुस्सा आ
1: हैं?
0: रहा, अपने हथौड़ा ना चलने पर, अपना हथौड़ा ना चलने पे अब गुस्सा आ रहा ना। खोलूंगा
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार ये?
0: ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूं आप।
1: अबे भाई भाई भाई तू जो करना है कर, तू फोन रख, तू भाई तू मेरे पास
0: फोन रख
1: कॉल मत
0: देता
1: कर।

दोस्तों, मैं हूँ आपकी मर्ची सिद्धि। और लाइफ में ना अक्सर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, वही कभी कभार सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी लगती है। फिर चाहे नई जॉब हो, नया सिटी या कोई बड़ा डिसीजन, यार शुरुआत में ना सब कुछ एक रोलर कोस्टर राइड जैसे ही फील होता है। और इसी एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन के बीच हम अक्सर वो गलतियाँ कर बैठते हैं जो शायद थोड़ी सी गाइडेंस से ना अवॉइड हो सकती थी। और घर खरीदना भी कुछ ऐसा ही माइलस्टोन है, इतना बड़ा डिसीजन कि एक्साइटमेंट तो होती ही है, लेकिन सवाल भी हज़ार होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस जर्नी को थोड़ा सिंपल कैसे बना दिया जाए और सबसे कॉमन मिस्टेक्स से कैसे बचा जाए। मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू।

0: परसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो मिलके ही रहता है, लेकिन कभी कभी किस्मत को भी थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और जब भी एमी विर्क का किस्मत ये गाना सुनती हूँ ना, एक पूरी कहानी आंखों के सामने आ जाती है। वो प्यार, वो इंतज़ार और वो थोड़ी सी कसक, और एमी विर्क की वो आवाज़ जो इमोशन को सीधा दिल तक पहुँचाती है। लेकिन इस बार एमी विर्क की कहानी सिर्फ स्क्रीन या प्लेलिस्ट तक नहीं रुकने वाली, क्योंकि शुक्रवार August 28 को एमी विर्क अपने यूनिटी टूर के साथ न्यू जर्सी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर इन कार्टरेट न्यू जर्सी, इट्स गोइंग टू बी एन अमित जेटली ऑफ सा यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। तो इवेंट का कैनवस बहुत ही ग्रैंड रहने वाला है, तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम sulekha.com या फिर saiusainc.com। और अब बारी आती है आपकी किस्मत की, क्योंकि मिर्ची लिसनर्स के पास कॉन्सर्ट की टिकट्स जीतने का मौका है। तो मुझे बताइए कि अगर एमी विर्क के कॉन्सर्ट में आपकी किस्मत खुल जाए तो वो कौन सा गाना होगा जो आप सबसे पहले लाइव सुनना चाहोगे। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, टाइप कीजिए एमी विर्क और अपना जवाब, और कॉन्टेस्ट में एंटर हो जाओ, क्योंकि हो सकता है अगला डीएम मेरा हो और मैं कहूँ कि बॉस किस्मत में एमी विर्क लाइव शो लिखा है। तो चलिए, अब किस्मत की बात हो ही रही है तो अगला गाना भी वही है, एमी विर्क का किस्मत। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट

कभी-कभी लगता है कि पहले हम गाने सुनते कम थे, उसके साथ ज्यादा रहते थे। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज अचानक कैसेट का वो जमाना याद आ गया। जी हाँ, जब फेवरेट गाना सुनने के लिए ना पूरा साइड ए पेशेंटली सुनना पड़ता था, फिर फास्ट फॉरवर्ड करना भी एक आर्ट होता था, और उस वेट का भी एक अलग ही मज़ा होता था। और मज़े की बात तो ये है कि फेवरेट गाने का इंतज़ार करते करते बीच के जितने भी गाने थे ना, वो भी हमें याद हो जाते थे, क्योंकि एक कैसेट हम खरीदते थे और उसके हर ट्रैक की अलग ही अपनी पहचान बन जाती थी। और वैसे तो आज प्लेलिस्ट में हज़ारों गाने हैं, रील्स में 20 सेकेंड्स के क्लिप्स हैं, लेकिन तब एक कैसेट महीनों तक हमारे साथ चलती थी। कार में वही, घर में वही, वॉकमैन में वही। और शायद इसीलिए आज भी जब भी कोई पुराना गाना बजता है ना, उसके सिर्फ लिरिक्स याद नहीं आते, वो पूरा दौर याद आ जाता है। स्पेशली वो दौर जब हम कैसेट की जब रील बाहर निकलती थी तो पेंसिल से उसे ठीक करते थे। तो चलिए आज रेडियो पर भी वही पुराना एहसास वापस लाते हैं। इस गाने को बिल्कुल कैसेट के ज़माने की तरह बिना स्किप किए पूरा इंजॉय कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ज़िंदगी की पहली कैसेट कौन से एल्बम की खरीदी थी। टेल मी ऑन इंस्टेड RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मैंने जिस एल्बम की खरीदी थी उसी का गाना आपके लिए आगे बजाने वाली हूँ। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो एक खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना, तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था। और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मज़े की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था, और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूछेगा आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई
1: हाँ
0: थी
1: जी
0: विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी हाँ जी
0: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका नाम क्या है? संतोष।
0: संतोष, संतोष, संतोष। सो क्या चल रहा है
1: आप
0: अभी?
1: क्या
0: आपको
1: करते हैं?
0: डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप
0: तो अभी ना
1: बताइए।
0: मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए, मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
1: संतोष क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू?
0: आई एम दुकान है मैडम कपड़े की अपनी, दुकान अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसी रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। दोस्तों नए देश में सबसे पहला कॉन्फिडेंस कब आता है पता है? जब लगता है कि हाँ यार हम यहाँ पर अब अपनी जगह बना सकते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, नई लाइफ शुरू करना एक्साइटिंग तो होता है लेकिन थोड़ा ओवरवेलमिंग भी होता है, स्पेशली जब हर जगह एक्सपीरियंस मांगा जाए। पर इमेजिन कीजिए एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनना जहाँ लर्निंग के साथ क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी मिले, ताकि क्लासरूम सिर्फ थियोरी तक ही लिमिटेड ना रहे, उसी के साथ कॉन्फिडेंस भी साथ जुड़े और हेल्थ केयर में अपनी जगह बनाने का जो हमारा सपना है वो भी पूरा हो, तो कितना बढ़िया होगा। तो उसी के लिए आज ही विजिट कीजिए एम्स एजुकेशन, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो ऑफर करते हैं हेल्थ केयर प्रोग्राम्स विद रियल टाइम क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। US इक्विवेलेंट हाई स्कूल ग्रेजुएशन के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फॉर मोर गाइडेंस कॉल 9082220002, 9082220002, या फिर आप विजिट कर सकते हो aimseducation.edu और हेल्थ केयर साइंस से जुड़ने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: परसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale

का हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आजकल कल का, लव आजकल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पर, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोक झोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कंट्रास्ट है। मजे की बात तो ये है कि इम्तियाज अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो खत्म होके भी मूवी में खत्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। जैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHR। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजार। Onion mirchi, it's hot.

0: सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट

दुबहित शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था, कंपोज्ड बाय प्रीतम। 2009 का लव आजकल का एल्बम, और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, आर फेवरेट आहू आहू। क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है। फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था और ना सिर्फ उस वक्त अभी भी उतना ही ग्रूविंग है। और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन इंस्टा कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आहू आहू राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज बाय प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज़ अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफ़ी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था। लेकिन फिर पता चला, क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ही ऐसी थी, जो रॉनस उनकी आवाज़ में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मज़े की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्जेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियाँ फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियाँ फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हेलो,
2: ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: अरे, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे क्यों होते हैं?
2: देखिए, मैंने हमेशा कब लिए आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे, तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो, आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई कहानी है, कोई फेस्टिवल है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: आई वॉन्ट टू टॉक टू Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you there?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I am sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi, Lajwan.

पीछे का हंगामा। शमशान लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल

0: जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab, mirchi kha.

का हंगामा। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है एक एवरग्रीन गाने के पीछे से। जी हां, गाता रहे मेरा दिल। यानी आपने जब ये गाना देखा होगा तो लगा होगा कि वाह क्या हिल्स है, क्या लोकेशन है, फुल पोस्ट कार्ड वाइब्स। देवानंद जी भी गाते हुए पहाड़ों में घूम रहे थे, एकदम केयर फ्री मोड। पर पर्दे के पीछे का सीन ना थोड़ा हटके था। देवानंद को पूरा यकीन दिलाया गया था कि ये जो शूट होने वाला है वो रोहतांग पास पे हो रहा है। रियलिटी चेक तो ये थी कि रोहतांग पास था ही नहीं, लोकेशन असल में 12 किलोमीटर दूर कहीं और ही थी। और जब देवानंद जी को पता चला तो वो बोले कि यार ये क्या था, मतलब गाना चल रहा है गाता रहे मेरा दिल, और पर्दे के पीछे डायरेक्टर बोल रहे कि यार चलता है थोड़ा सा झोल, मतलब ये क्या हो रहा है। तो कुछ कभी कभी ना मतलब एक्टर्स को भी इस तरह से समझा बुझा के थोड़ा बहुत उल्लू बनाकर ऐसे लोकेशन पे लेके जाते हैं जो लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप समझ गए कि यार लोकेशन भी कभी कभी एक्टिंग करती है और सच इंटरवल के बाद ही रिवील होता है। तो दोस्तों ऐसे पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किस्से अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दिल्ली स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन

तो मैं हूँ आपकी मर्जी सिद्धि अंजलि। अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना, आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।